0: இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஜயா பாரதி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला तथा बाल विकास विभाग के दो दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। इसमें सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किए जा रहे विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में ये दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों, पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ये सम्मेलन कल शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी परिषद के सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कहा है कि भारत एक संपूर्ण दूरसंचार मूल्य श्रृंखला की ओर अग्रसर है और नियमों, उपकरणों तथा नवाचार को

0: आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान उच्च स्तरीय सीईओ गोलमेज सम्मेलन में श्री सिंधिया ने देश के विस्तारित डिजिटल तंत्र और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, उभरती प्रौद्योगिकियों, नवाचार और आर्थिक विकास में दूरसंचार की बढ़ती भूमिका की चर्चा की। सरकार ने गैर अनुसूचित कैंसर की दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लगाए जाने वाले लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने आशा व्यक्त की है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी, जिससे कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। योग्य उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसरशिप या PhD के लिए वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA को अप्रैल से सितंबर के बीच भारत के जैविक संसाधनों का उपयोग करने वालों से 9,68,00,000 रुपए मिल सकते हैं। ये राशि पहुंच और लाभ साझाकरण यानी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त हुई है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि कुल प्राप्त राशि में से 9,56,00,000 रुपए विभिन्न क्षेत्रों में जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए प्राप्त हुए हैं। भारत ने पिछले कुछ दिनों में आभा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले में कई नागरिकों की मौत हुई है तथा कई घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के पुणे स्थित उनके फार्म हाउस नानाची वाडी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशिष्ट योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। खेलों में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। उधर पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi, approved a series of measures to ease compliance for taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold for prosecution from 1 crore to 5 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media in national capital. The punishment, whether a fine, imprisonment or both, will be left to judicial discretion. In each case, a taxpayer who files a return late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery proceedings, interest and proportionate penalty. The finance minister said no changes has been made to GST rates at the meeting and that the rate structure is settled. She said the GST council has recommended common standards for notices and proceedings. Prime Minister Narendra Modi has welcomed the new round of GST reforms approved by the GST Council yesterday. In a social media post, the Prime Minister said that the Council's recommendations on removal of arrest provisions, greater decriminalization and simpler procedures will have a very positive impact. Mr. Modi said that the focus is on faster decisions, lower compliance costs, automated refunds, and trust-based administration. He added, these

0: இன்னும் சில நொடிகளில் சமஸ்கிருதத்தில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: இயம் ஆகாஷவாணி. சம்ப்ரதி வார்த்தாஹ ஸ்ரூயந்தாம் பிரவாச்சிகா ரிச்சா ஜா. अथ वार्ताः. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां महिला बाल विकास विभागीय शिखर सम्मेलनस्य समापन सत्रे सहभागं करिष्यति. ह्यः आरब्धे अस्मिन् द्विदिवसीय सम्मेलने सर्वेषां राज्यानां महिला बाल विकास क्षेत्रैः सम्बद्धानां राजनीतिक नेतृणां अधिकारिणां च सहभागिता भवति. प्रधानमन्त्रिणा परिकल्पितानां विभागीय शिखर सम्मेलनानां शिखायाः इदं द्वितीयं सम्मेलनमस्ति. अस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यं सहकारी संघव्यवस्थायाः सुदृढीकरणं, राष्ट्रिय प्राथमिकतानां पूर्तये सामूहिक दायित्वभावनायाः प्रवर्धनं तथा केन्द्र राज्ययोः परस्पर सहकारेण कार्यपरिणामानां त्वरितसाधनमस्ति. सम्मेलने चतुर्षु प्रमुखविषयेषु ध्यानं केन्द्रितमस्ति: पोषणं, प्रारम्भिकशिक्षा, बालसंरक्षणं तथा महिलानां सुरक्षा सशक्तीकरणञ्च. वस्तु सेवाकर परिषदा नवदिल्ल्यां सम्पन्ने स्वकीयस्य 75वें उपवेशने करदातृभ्यः अनुपालन प्रक्रियां सरलीकर्तुं विविधाः उपायाः अनुमोदिताः. एतेषु निर्णयेषु वस्तु सेवाकर व्यवस्थायाः अन्तर्गतं कराधिकारिणां निगडीकरणम्, अधिकाराणां निरसनम्,

0: श्रोताओं, डिजिटल क्रांति, ईमेल और व्हाट्सएप के इस तेज तर्रार दौर में भी क्या आपको याद है वो आखिरी बार जब आपके घर के दरवाजे पर साइकिल की घंटी बजी थी और एक आवाज गूंजी थी, डाक बाबू आए हैं। आज का दिन हमें उसी खास एहसास, उसी भरोसे की याद दिलाता है। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार श्रोताओं। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूँ जया भारती, आपकी आज की डाकिया लेकर आई हूँ आपका अपना पसंदीदा न्यूज मैगजीन कार्यक्रम आज सवेरे। श्रोताओं, आज तारीख है 9 अक्टूबर 2026 और आज दुनिया भर में विश्व डाक दिवस मनाया जा रहा है। संचार माध्यम भले ही बदल गए हों, लेकिन भारतीय डाक आज भी हमारे जीवन का अटूट हिस्सा है। आज के इस अंक में हम डाक दिवस की इस खूबसूरत विरासत के बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रूबरू होंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन हलचल से, जानेंगे आपके महानगरों की धड़कन यानी मेट्रो न्यूज, मौसम का पूरा हाल और आज के इतिहास के सुनहरे पन्ने। तो बने रहिए हमारे साथ अगले 30 मिनट तक, और एक बार फिर बता दूं कि कार्यक्रम का आखिरी सेगमेंट मिस मत कीजिएगा क्योंकि वहां आपके लिए है बहुत कुछ खास। तो अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सफर। आज मेरी सहयोगी है तन्वी खुराना। हेलो तन्वी।
1: हेलो जया, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। वेल यस, दिस इज आवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, एंड लाइक जया हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस यू टू आवर मैगजीन प्रोग्राम एंड वी हैव अ लॉट इन स्टोर फॉर ऑल ऑफ यू। यस, टुडे इज वर्ल्ड पोस्ट डे एंड a very happy World Post Day to all of you. Now that we are talking about it, all I can imagine is that red van with Indian Post written on it and crossing my way.

0: It's so nostalgic every time you see it,
1: बिल्कुल
0: and you cannot be but thankful to all those people who deliver our postal messages.
1: जी.
0: With this, let's just begin our program with the news headlines.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला तथा बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे. इसमें सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं. प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किए जा रहे विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में ये दूसरा सम्मेलन है. इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है. सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों, पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. ये सम्मेलन कल शुरू हुआ था.
0: Houthis claimed fresh missile strikes on Saudi Arabia yesterday, targeting King Khalid International Airport in Riyadh, Najran Airport and an airbase in Khamis Mushayt. The Houthis already reportedly warned workers to stay away from Saudi oil facilities and also airports, identifying them as potential targets. In response, the Saudi-led coalition announced its air defenses intercepted and destroyed 3 ballistic missiles, 2 targeting Riyadh and 1 targeting Khamis Mushayt, and vowed the attacks would not go unpunished. The attacks have disrupted international air travel, leading several airlines, including Air India, IndiGo and Akasa, to temporarily suspend flights to Riyadh. The Houthi attacks on Saudi airports drew condemnation from the India, UAE, Jordan, Egypt, Kuwait and Bahrain. In a statement, Ministry of External Affairs said that the targeting of civilian infrastructure is completely unacceptable. The ministry said India expresses its deepest condolences to the families of those who have lost their loved ones. India also expresses solidarity and stands with the people and the government of the Kingdom of Saudi Arabia. Embassy of India in Riyadh has issued advisory to Indian nationals residing in Saudi Arabia to remain alert and vigilant and stay indoors as necessary in view of the current situation. In an advisory, the embassy has urged Indian nationals to refrain from circulating or reposting any videos or news related to the ongoing events. The 24/7 helpline of Pravasi Bharatiya Sahayata Kendra remains available on toll-free number 800-2471-234.
2: अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने आज प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगाने की घोषणा की है. इनमें भारतीय कंपनियां इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल के अलावा कॉग्निजेंट, कैपजेमिन, माइक्रोसॉफ्ट और एडोबे शामिल हैं. अमेरिका के श्रम मंत्री कीत सुंडरलिंग ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ चल रही संघीय जांच के बाद यह कदम उठाया गया है. पीईआरएम नाम की यह प्रक्रिया उन नियोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है जो विदेशी कर्मचारियों के लिए ग्रीन कार्ड हासिल करना चाहते हैं. हालांकि अमेरिकी प्रशासन ने अब तक कंपनियों के खिलाफ जांच के निष्कर्ष या कथित उल्लंघनों का विस्तृत ब्यौरा जारी नहीं किया है. ये रोक पीईआरएम आवेदनों पर लागू होगी. इसमें मौजूदा एच1बी वीजा या ग्रीन कार्ड अपने आप रद्द नहीं होंगे. इस बीच माइक्रोसॉफ्ट ने भी इन आरोपों को खारिज किया है.
0: Government has approved a cap on the margins charged for the supply and sale of non-scheduled anti-cancer drugs, limiting them to 30% of the maximum retail price, that is MRP. The Ministry of Chemicals and Fertilizers expects this measure to reduce medicine prices by up to 70%, helping cancer patients save 2,500 crore rupees annually. While essential cancer medicines on the scheduled list are already subject to strict government-set ceiling prices, this new decision extends price protection to non-scheduled cancer medicines by limiting their margins. Once an expert committee under the Directorate General of Health Services finalizes the list of medicines to be covered, the National Pharmaceutical Pricing Authority will issue the official notification.
2: और तन्वी, अब खबर है जो कल सुबह सुबह आई और उससे अभी भी फिल्म जगत के लोग और नाना पाटेकर जी के फैंस अभी भी स्ट्रोक से उबर नहीं पाए हैं. वो हमारे बीच नहीं रहे तो दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर

0: का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के पुणे स्थित उनके फार्म हाउस नानाचीवाड़ी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री नाना पाटेकर के पार्थिव शरीर को पुणे हवाई अड्डे पहुंचने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार ने श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार के दौरान फिल्म जगत की कई हस्तियां भी वहां मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशिष्ट योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा।
1: And moving towards sports, in cricket, India will take on West Indies in the second of the five-match T20 international series in Ranchi today. The match will begin at 7 p.m. Indian time. India lead the series 1-0 after winning the opening match with skipper Shreyas Iyer's century powering the hosts to victory.
0: और श्रोताओं, अब समय है महानगरों से जुड़ी खबरों का, तो शुरुआत करते हैं
1: चेन्नई से। द एयरफोर्स स्टेशन एट अवधी इन चेन्नई सेलिब्रेटेड इंडियन एयरफोर्स डे यस्टरडे इन अ ग्रैंड मैनर एज पार्ट ऑफ द पॉलिसी टू इनवाइट पद्म अवॉर्डीज एंड एज द फोर्थ इन इट्स सीरीज एयरफोर्स स्टेशन अवधी इनवाइटेड पद्मश्री अवॉर्डी डॉक्टर वी एस नटरंजन एमडी फेलो ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस फॉर दिस ओकेजन। डॉक्टर नटराजन इज अ पायनियर इन द फील्ड ऑफ जेरेट्रिक मेडिसिन एक्लेम्ड एज द फादर ऑफ दिस फील्ड in India and has worked extensively in the field of elderly care. The Deccan Center for International Relations, an independent think tank under the Institute for Financial Management and Research, in collaboration with IIT Madras, held a one-day international conference titled Building India's Nuclear Ecosystem, Policy, Technology and Industry at IIT Madras. The conference underscored that elements of the strategic community, industry leaders, academics, policy makers and other thought leaders must move together to build a nuclear ecosystem that is safe, competitive, self-reliant and globally respected. National Cadet Corps NCC Group Chennai A, under the aegis of the NCC Directorate Tamil Nadu, Puducherry and Andaman and Nicobar Islands, organized a 20-kilometer long cycle rally from Uthandi Toll Plaza along the East Coast Road, Chennai, as part of the Drug Free India campaign. The rally was led by the Deputy Director General of the NCC, Commodore Nambiath Sudeep, with enthusiastic participation by NCC cadets from various educational institutions. Carrying banners and placards, the cadets spread the message, "Choose life, not drugs," urging youth to adopt healthy, active and drug-free lifestyles. It highlighted the vital role of the youth and the community in combating substance abuse.
0: और अब समय है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समाचारों का। खादी महोत्सव 2026 के अंतर्गत कल दिल्ली हाट INA में विशेष खादी और ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ हो गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा आयोजित ये प्रदर्शनी 15 अक्टूबर तक जारी रहेगी। प्रदर्शनी में कुल 115 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें 48 स्टॉल खादी के हैं, जबकि शेष स्टॉल ग्रामोद्योग और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से जुड़े उद्यमियों और कारीगरों के हैं। एक खबर हमारे पास कला से संबंधित है। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल कनॉट प्लेस में स्थित सेंट्रल पार्क में प्लांट मंडला रंगोली का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस प्लांट मंडला रंगोली के माध्यम से विकसित भारत 2047 और विकसित दिल्ली के संकल्प को एक साथ अभिव्यक्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस मंडला में लगाया गया प्रत्येक पौधा केवल कलात्मक रचना का हिस्सा नहीं है, बल्कि पौधे लगाने, उनकी रक्षा और पोषण करने तथा दिल्ली के वन और शहरी हरित क्षेत्रों को भी संरक्षित और विकसित करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। जीवित पौधों से तैयार ये अनूठे रंगोली दिल्ली को हरित और सुंदर बनाने के साथ साथ प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का भी संदेश देती है। कला और संस्कृति से जुड़ी एक और खबर है दिल्ली से। दरअसल नमो भारत स्टेशनों के माध्यम से कला, संस्कृति और विरासत से लोगों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने कल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसके अंतर्गत नमो भारत स्टेशन प्रदर्शनियों, साहित्यिक कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और सांस्कृतिक आयोजनों द्वारा लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक

0: सांस्कृतिक परंपराओं का अनुभव कराने और उनसे जुड़ने का अवसर प्रदान किया जाएगा.
1: Moving towards Bangalore, the Minister for Information Technology and Biotechnology, Priyank Kharge, said that the artificial intelligence-powered language technology platform Bhashini will strengthen digital governance and improve access to citizen services in local languages and dialects in Karnataka. Mr. Kharge informed this during the inauguration of a Bhashini workshop organized by the Department of E-Governance in Bangalore yesterday. He explained that Bhashini opens up as an opportunity to use AI, voice and translation technologies to bridge communication channels between the government and the public.
0: और अब चलते हैं मुंबई की तरफ. महाराष्ट्र सरकार ने राज्य से सूखाग्रस्त घोषित 265 तालुकों में मांग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. ये लाभ उन लोगों को भी मिलेगा जो वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते. ऐसे लाभार्थियों को अंत्योदय अन्न योजना या प्राथमिकता प्राप्त परिवार श्रेणी में शामिल किया जाएगा और परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य होगा. महाराष्ट्र सरकार ने विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए अलग अलग छात्रावासों के बजाय सभी समुदायों के छात्रों को आवासीय सुविधाएं प्रदान करने वाले एकीकृत छात्रावास स्थापित करने की भी योजना बनाई है. इस योजना में मंडल स्तर पर लगभग 1000 छात्रों और जिला स्तर पर 500 छात्रों की क्षमता वाले छात्रावास शामिल हैं.
1: And moving towards Hyderabad, the Telangana government has decided to move its administration fully online to make it more open and efficient. Chief Secretary Sanjay Jaju held a review meeting yesterday with senior officials from all departments. He directed them to record complete details of all government employees in the eHRMS system. Officials told the Chief Secretary that data of about 3.48 lakh employees is being entered. So far, about 93% of the data from 38,710 offices has been completed. The Chief Secretary asked officials to finish the remaining work by 15th of this month.
0: और अब समय आ गया है कि मेट्रोज में मौसम कैसा है ये जानने का. तो राजधानी दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. शहर का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. मुंबई में कुछ इलाकों के लिए मॉनसून के बाद आज पहली बार लू की चेतावनी का येलो अलर्ट जारी किया गया है. शहर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. बात करें जॉय सिटी कोलकाता की तो बारिश के साथ आंधी का भी अनुमान है. न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.
1: Chennai is likely to see a generally cloudy sky with light rain. The temperatures are expected to range between minimum of 27 degrees and maximum of 35 degrees Celsius. Now, Bangalore is forecast to experience partly cloudy sky and Hyderabad is likely to see a partly cloudy sky but with haze. The temperature for Bangalore for minimum could be 21 degrees and while maximum may reach 31 degrees. And if we talk about Hyderabad, temperatures are expected to range from 24 degrees to 35 degrees Celsius. And moving towards our next section, like Jaya has already mentioned, today is World Post Day. So let's talk a little bit more about it. Long before instant messages and video calls, letters connected hearts across mountains, oceans and borders. World Post Day celebrates this remarkable legacy every year on this particular day, that is 9th of October, commemorating the establishment of the General Postal Union in 1874 through the Treaty of Bern, signed by 22 nations.
0: बिल्कुल. और साल 1969 में जापान के टोक्यो में हुए एक सम्मेलन के बाद इस दिन को आधिकारिक तौर पर मनाना शुरू किया गया. आज भले ही संदेश पलक झपकते ही मोबाइल पर पहुंच जाते हैं लेकिन भारतीय डाक का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है. देश के सुदूर पहाड़ों, जंगलों और सीमा पर तैनात फौजी भाइयों तक खुशियां या उम्मीदें पहुंचाने का काम आज भी हमारा डाक विभाग ही करता है. दिलचस्प बात यह है कि आज का डाकिया सिर्फ कागज की चिट्ठियां नहीं लाता बल्कि वो ग्रामीण भारत में डिजिटल बैंकिंग, आधार कार्ड, सरकारी पेंशन और जरूरी दवाइयां लेकर सीधे लोगों के दरवाजे तक पहुंच रहा है.
1: And today India Post connects bustling cities with remote villages delivering letters, parcels and essential financial services.

0: And apart from World Post Day, today is also Territorial Army Day. What if the people working in offices, farms and businesses could also wear a military uniform when the nation called? That is the inspiring spirit of India's Territorial Army. Its history dates back to 1920 when the Indian Territorial Force was established under British rule.
1: और स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1948 में प्रादेशिक सेना अधिनियम पारित किया गया। वर्ष 1949 में आज ही के दिन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने इस सेना का विधिवत उद्घाटन किया था।
0: And today, these citizen soldiers balance civilian careers with military responsibilities, supporting the regular army and contributing to essential operations.
1: और श्रोताओं, महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वयं को खोजने का सर्वोत्तम मार्ग है स्वयं को दूसरों की सेवा में समर्पित कर देना। प्रादेशिक सेना दिवस पर हम उन समर्पित भारतीयों को नमन करते हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि देशभक्ति का वास्तविक अर्थ है जब भी राष्ट्र को आवश्यकता हो उसकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना।
0: And what all happened on this particular day, let's move towards that. Circa 1000 Norse explorer Leif Erikson is traditionally said to have reached Vinland in present-day Newfoundland, Canada, making him the first known European to reach North America. This day is observed annually as Leif Erikson Day in the United States.
1: इसके कुछ दिनों बाद 1446 में
0: The Hangul alphabet, the Korean writing system, was first published under King Sejong the Great. This day is commemorated annually as Hangul Day in South Korea.
1: और वर्ष 1876 में पहली बार टेलीफोन पर आउटवायर के जरिए दो तरफा बातचीत हुई थी।
0: In the year 1962, Uganda became independent from British rule with Milton Obote becoming its first prime minister.
1: 1997 में इटली के अभिनेता और लेखक डारियो फो को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया और वर्ष 2002 का भौतिकी पुरस्कार यानी कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार अमेरिका के रेमन डेविस और जापान के कोशिबा को संयुक्त रूप से देने की घोषणा की गई। वहीं 2006 में गूगल ने यूट्यूब के अधिग्रहण की घोषणा की।
0: In the year 2009, US President Barack Obama won the Nobel Peace Prize for his efforts to strengthen international diplomacy and cooperation.
1: और श्रोताओं, अब वक्त हो चला है हमारे आज के सबसे पसंदीदा और आखिरी सेगमेंट का, जहां हम बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो सबसे पहले आज का दिन देश के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक को नमन करने का है। आज उत्कल मणि यानी पंडित गोप बंधु दास जी की जयंती है। उनका जन्म 9 अक्टूबर 1877 को ओडिशा के पुरी जिले के सुआंडो गांव में हुआ था। गोप बंधु दास जी की एक ओडिया कवि, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। ओडिशा में शिक्षा और सामाजिक चेतना जगाने के लिए उन्होंने सत्यवादी वन विद्यालय की स्थापना की थी। उनके इसी निस्वार्थ देशप्रेम को देखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें उत्कल मणि यानी ओडिशा का रत्न की उपाधि दी थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और ओडिया साहित्य में उनके अमूल्य योगदान के सम्मान में भारतीय डाक विभाग ने उन पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। इसी के साथ आज ही पुण्यतिथि है जलियांवाला बाग के असली नायक, प्रखर बैरिस्टर और महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जी की। 15 जनवरी 1888 को अमृतसर पंजाब में जन्मे डॉक्टर किचलू ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बीए और जर्मनी से पीएचडी की उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन वकालत की चमक धमक छोड़ वे देश की आज़ादी के मैदान में कूद पड़े। साल 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ अमृतसर में आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने ही किया था। उनकी और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में ही जलियांवाला बाग की ऐतिहासिक सभा बुलाई गई थी। आज़ादी के बाद विश्व शांति में उनके योगदान के लिए उन्हें साल 1952 में प्रतिष्ठित लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार पाने वाले वे पहले भारतीय थे। भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है।
0: And today is the birth anniversary of John Lennon, an English musician and activist. He gained global fame as the founder, co-lead vocalist and rhythm guitarist of the Beatles. John Lennon's songwriting partnership with Paul McCartney remains the most successful in history. Starting with All You Need Is Love, his songs were adopted as anthems by the anti-war movement and the

ये आवाज या मर्दन सुनते ही हर भारतीय का सिर श्रद्धा से झुक जाता है और जहन में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की छवि उभर आती है। श्रोताओं, ये जादुई रचना किसी और की नहीं बल्कि दिग्गज संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन जी की है। आज इनकी पुण्यतिथि है। रविंद्र जैन जी ने 9 अक्टूबर 2015 में मुंबई में अंतिम सांस ली थी और विरासत में छोड़ गए थे असंख्य कालजयी भजन और सुमधुर संगीत।

क्या बात है, इस बेहद रोमानी और सुरेले गीत को भला कौन भूल सकता है। इस गाने के बोल भी खुद रविंद्र जैन जी की कलम से निकले थे और संगीत भी उन्हीं का था, और इस फिल्म के गानों ने यशोदास जी को घर घर में लोकप्रिय बना दिया। ये फिल्म चित्तौर का गीत है। रविंद्र जैन जी का जन्म 28 फरवरी 1944 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। जन्म से ही आंखों की रोशनी न होने के बावजूद उन्होंने संगीत को अपनी दृष्टि बनाया

0: श्रोताओं, साज बजाने वाले तो दुनिया में बहुत होते हैं, लेकिन कुछ विरले कलाकार ऐसे होते हैं जो जिस साज को साधते हैं उसी के पर्याय बन जाते हैं। जब भी सरोद का नाम लिया जाता है तो जहन में सबसे पहला नाम उभरता है सरोद सम्राट उस्ताद अमजद अली खान साहब का। आज सुरों के इस महान जादूगर का जन्मदिन है। श्रोताओं, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए जया और तन्वी को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए आप सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड।
1: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% की गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए, भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास विभाग क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके साथ ही बेहतर कार्य प्रणालियों को साझा करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान तलाशने और सुशासन तथा सेवा वितरण में सुधार के लिए समयबद्ध कार्रवाई पर सहमति बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST परिषद के अनुमोदित GST सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। उन्होंने कहा कि ये सुधार GST को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के देश सेवा मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये यात्रा निरंतर जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण की मिसाल के साथ आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है।

0: आज हम विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि कैसे त्रिपुरा में आकांक्षी जिलों और जीवंत गांवों की योजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कार्य रूप में परिवर्तित किया गया है।
1: नीति आयोग के आकांक्षी जिला अभियान के तहत त्रिपुरा के धलाई जिले में उल्लेखनीय बदलाव आया है। मातृ स्वास्थ्य सेवाओं, प्राथमिक शिक्षा, बच्चों के सीखने के स्तर, सूक्ष्म सिंचाई और ग्रामीण सड़कों की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान देने से जिले के सामाजिक और आर्थिक विकास में लगातार सुधार हुआ है। वास्तविक समय में प्रदर्शन की रैंकिंग और बेहतर काम के लिए प्रोत्साहन ने धलाई को देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल होने में सहायता की है। ये इस बात का उदाहरण है कि आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनाने और स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने से जनजातियों, पिछड़े क्षेत्रों में भी विकास को गति दी जा सकती है। बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा की 856 किलोमीटर लंबी सीमा पर आकांक्षी जिला अभियान सीमावर्ती गांवों की तस्वीर बदल रहा है। आधुनिक डिजिटल नेटवर्क, हर मौसम में उपयोग होने वाली सड़कें, पाइप से जलापूर्ति और सौर ऊर्जा जैसी सुविधाओं से बुनियादी ढांचे की कमियां दूर हो रही हैं। स्थानीय हथकरघा, पर्यावरण, पर्यटन और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा मिलने से कारोबार के नए अवसर मिल रहे हैं और पलायन रोकने में सहायता मिल रही है। इससे सीमावर्ती समुदाय मजबूत हो रहे हैं। ऋषिमुख पंचायत समिति के अध्यक्ष हमें बताते हैं,
2: दूर दूराज गाँव में भी आज 4G 5G मोबाइल पूरी सेवा, हर मौसम में चलने के लिए पक्के सड़कें, पीने का पानी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर, पक्के शौचालय, सौर विद्युत, गाँव के युवा लोगों के लिए स्किल इंडिया के माध्यम से प्रशिक्षण और गाँव की महिला लोगों के लिए रसोई का गैस उपलब्ध कराने जैसा काम हो रहा है। मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय सीमांत पर्यटन और हैंडलूम आधारित समूहों को भी सहायता देने जैसा काम हो रहा है।
1: कि ये दोनों केंद्रीय योजनाएं मिलकर त्रिपुरा के दूरदराज के अंदरूनी इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की खाई को पाट रही हैं। एक ओर पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर सीमावर्ती गाँवों में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दूरदराज के गाँवों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गाँवों तक हर नागरिक राज्य की विकास यात्रा में भागीदार बने। अगरतला से आदित्य दत्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में गढ़खटंगा में भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इनमें प्रशासनिक भवन, बिरसा मुंडा बहुउद्देशी हॉल, जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर और अगली पीढ़ी के जैव प्रजनन सुविधा केंद्र शामिल हैं। उन्होंने संस्थान में एक नए अतिथि गृह की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना पर 119 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। एक रिपोर्ट।
2: रसायन और उर्वरक मंत्रालय को आशा है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी और कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। ये नया निर्णय लाभ प्रतिशत सीमित करने, गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं को भी मूल्य संरक्षण प्रदान करेगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। इससे पहले फरवरी 2019 में सरकार के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण ने 42 चुनिंदा गैर सूचीबद्ध कैंसर की दवाओं पर लाभ प्रतिशत सीमित किया था, जिससे उन दवाओं के MRP में 91% तक की कमी आई थी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। इनमें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की मधुरंतकम और धारापुरम

0: पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीटों के साथ असम की नगांव लोकसभा सीट भी शामिल है। इन सीट पर मतदान मंगलवार को हुआ था। पुदुचेरी में थट्टन चावड़ी विधानसभा में डाक मतपत्रों की गिनती से मतगणना की शुरुआत हुई। इसके बाद सवेरे 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। शुरुआती रुझान सवेरे 9:30 बजे तक आने की संभावना है। उधर तमिलनाडु में मदुरंतकम विधानसभा क्षेत्र में 27 तथा धारापुरम विधानसभा सीट पर 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार के लिए पहला उपचुनाव है। हुती विद्रोहियों ने कल सऊदी अरब पर मिसाइल हमले करने का दावा किया है। इन हमलों में रियाद का किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नजरान हवाई अड्डा और खमिस मुशैत स्थित एक एयरबेस निशाने पर थे। एक रिपोर्ट।
1: हुती विद्रोहियों ने कर्मचारियों को सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों से दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने इन ठिकानों को संभावित निशाना बताया। इसके जवाब में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। इन हमलों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा सहित कई विमानन कंपनियों ने रियाद के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी हैं। संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मिस्र, कुवैत और बहरीन ने इन हमलों की निंदा की है। इस बीच रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर घरों के अंदर रहने की अपील की है। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हेल्पलाइन सेवा भी चालू है। इसका टोल फ्री नंबर है 800-247-1234। दुबई से मनीष शिवा झोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के ने 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इनमें भारतीय कंपनियां इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एससीएल के अलावा कॉग्निजेंट, कैंप जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब शामिल हैं। अमेरिका के श्रम मंत्री कीथ सोडरलिंग ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ जारी संघीय जांच के बाद ये कदम उठाया गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका केवल असाधारण प्रतिभा वाले विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवर्जन कार्यक्रमों का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशी पेशेवरों के आवेदनों पर विचार करते समय आवर्जन अधिकारियों को 2 कसौटियों पर ध्यान देना होगा। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में रात करीब 11:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर पुणे हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार ने श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार के दौरान फिल्म जगत की कई हस्तियां भी उपस्थित थीं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु का सामना थाईलैंड की रत्चानोक इंतानोन से होगा। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में कल जापान की रीको गुंजी को हराया था। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। उत्तराखंड में आज देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की आशंका है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दिए गए वक्तव्य को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी का आह्वान, साइबर सुरक्षा पर साथ आएं, दुनिया के देश ठगी होने से पहले ही रोकने वाला तंत्र बनाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डीप फेक रोकने के लिए साथ आएं देश और कंपनियां। अमर उजाला के अनुसार मोदी बोले, 5 लाख करोड़ रुपए की गड़बड़ी रोकी तभी हो रहा मेरा विरोध। पंजाब केसरी के मुताबिक जिनके मुफ्त की कमाई बंद हुई चीखते चिल्लाते रहे। दैनिक जागरण के अनुसार जीएसटी अधिकारियों से छिन गई गिरफ्तारी की शक्तियां,

0: जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे कारोबारियों को राहत। अमर उजाला लिखता है, अब कोर्ट के आदेश पर ही गिरफ्तारी, 10,000 रुपए से कम के मामलों में नोटिस नहीं। वन नेशन वन टैक्स पर विचार, ऑनलाइन सामान महंगा, मांगना होगा सस्ता। जनसत्ता का शीर्षक है, सस्ती होगी कैंसर की दवाएं, व्यापारी 30% ले सकेंगे मुनाफा। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का असर, कैंसर दवाओं में मुनाफे की डकैती रुकेगी। लोकसत्य की सुर्खी है, यूपीआई शुल्क पर त्योहारों में राहत, जनवरी तक टल सकता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। दैनिक जागरण का शीर्षक है, सैटकॉम नीति पूरी तरह निष्पक्ष, भारत ने स्टारलिंक के प्रमुख एलन मस्क के आरोप किए खारिज, बैकफुट पर मस्क, कहा भारत के लिए बहुत मददगार साबित होगी स्टारलिंक।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना जारी। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए, भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to participate in valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi today. Government caps trade margins on non-scheduled anti-cancer drugs at 30% of MRP. Prices may fall by up to 70%. Counting of votes begins for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam. Last rites of veteran actor Nana Patekar performed with full state honours at his Pune farmhouse. Houthi launches fresh attacks on airports in Saudi Arabia. India asks its nationals residing in that country to remain alert and vigilant. And in cricket, second T20 international between India and West Indies to be played in Ranchi this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will participate in the valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi this evening. The two-day Departmental Summit, which began yesterday, is witnessing participation of political leadership and officials dealing with the women and child development sector from all states. More from our correspondent.
3: It is second in the series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen cooperative federalism, foster collective ownership of national priorities, and accelerate outcomes through closer center-state collaboration. The summit is focusing on 4 key themes, including nutrition, early education, child protection, women's safety, and empowerment. The departmental summit model is bringing together stakeholders from the union and state governments to deliberate on sectoral priorities, share good practices, address implementation challenges, and agree on time-bound actions for improved governance and service delivery. With Priya, Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
2: Government has approved a cap on the margins charged for the supply and sale of non-scheduled anti-cancer drugs, limiting them to 30% of the maximum retail price or MRP, a report.
4: The Ministry of Chemicals and Fertilizers expects this measure to reduce medicine prices by up to 70%, helping cancer patients save 2,500 crore annually. While essential cancer medicines on the scheduled list are already subject to strict government-set ceiling prices, this new decision extends price protection to non-scheduled cancer medicines by limiting their margins. Once an expert committee under the Directorate General of Health Services finalizes a list of medicines to be covered, the National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) will issue the official notification. Cancer incidence is rising in India, affecting about 60 people per lakh population. Treatment places a heavy financial burden on patients and their families, who often pay substantial amounts from their own pockets. The ministry stated that the new cap will curb excessive profiteering, address unfair pricing practices in the market, and ensure fairer prices for patients. With Rishu Jaiswal and Priya.

0: घर को पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: நேரம் 10 மணி. ஆகாஷவாணி
1: சாத் மே முகேஷ் குமார். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विभाग से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके साथ ही बेहतर कार्य प्रणालियों को साझा करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान तलाशने और सुशासन तथा सेवा वितरण में सुधार के लिए समयबद्ध कार्रवाई पर सहमति बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद के नए कर सुधारों का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधान हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा तय कर दी है। यह अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आने की संभावना है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना जारी है। इनमें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीटों के साथ असम की नगांव लोकसभा सीट भी शामिल है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कल विस्फोटक निष्क्रिय करते समय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 4 जवान घायल हो गए। एक रिपोर्ट।
3: सुकमा जिले के भेजी थाना क्षेत्र के एलआर मडगू कैंप के पास बोधराज पदर नाले के करीब एम्यूनेशन टेक्नीशियन टीम और सीआरपीएफ जवान बारूदी सुरंगों को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय करने की प्रक्रिया में लगे हुए थे। इसी दौरान एक विस्फोटक का अंश पास में आकर गिरकर फट गया। हादसे में 4 जवान घायल हो गए, इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जाती है। सभी घायल जवानों को हैदराबाद रेफर किया गया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: केरलम में भारतीय डाक विभाग बहादुरी का परिचय देने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर के सम्मान में एक विशेष समारोह आयोजित कर विशेष आवरण जारी करेगा। कैप्टन ने पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तल अवीब जा रही फ्लाई दुबई विमान में सवार 174 लोगों की जान बचाई थी। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में कल रात पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैच की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। उत्तराखंड में देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। राज्य के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब में हवाई अड्डों पर हमले किए। भारत ने हमलों की निंदा की, कहा नागरिक सुविधाओं को निशाना बनाना अनुचित। भारत ने अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह किया। अमेरिका ने 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया रोकी। इसका उद्देश्य केवल असाधारण विदेशी प्रतिभाओं को आकर्षित करना। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। हुती विद्रोहियों ने कल सऊदी अरब पर मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों में रियाद का किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नजरान हवाई अड्डा और खमिस मुशैद का एयरबेस निशाने पर थे। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नागरिक सुविधाओं को निशाना बनाना पूरी तरह अनुचित है। मंत्रालय ने कहा कि भारत हमलों में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। भारत ने कहा कि वो सऊदी अरब के लोगों और वहां की सरकार के साथ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में कई नागरिकों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हुए हैं।
1: हुती विद्रोहियों ने कर्मचारियों को सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों से दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने इन ठिकानों को संभावित निशाना बताया। इसके जवाब में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। इन हमलों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा सहित कई विमानन कंपनियों ने रियाद के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी हैं। संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मिस्र, कुवैत और बहरीन ने इन हमलों की निंदा की है। इस बीच रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर घरों के अंदर रहने की अपील की है। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हेल्पलाइन सेवा भी चालू है। इसका टोल फ्री नंबर है 800-247-1234। दुबई से मनीष शिवा झोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकी गुटों को अपने समर्थन की बात छिपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11, 2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकी हमलों को नहीं भूली है। एक रिपोर्ट।
2: संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रथम सचिव रघु पुरी ने कहा कि केवल घोषणाओं से आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता। श्री पुरी ने आतंकवादियों, उनके वित्त पोषकों और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने मसूद अजहर के अफगानिस्तान में छिपे होने के पाकिस्तान के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि तालिबान सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया है। श्री पुरी ने मसूद अजहर के बारे में सूचना देने के लिए 70 लाख रुपए के इनाम की नई घोषणा को भी दिखावा बताया। प्रमुख आतंकवादी हमलों का उल्लेख करते हुए श्री पुरी ने कहा कि आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराना आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर करता है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत और रूस ने रक्षा क्षेत्र में सामरिक साझेदारी सुदृढ़ बनाने के लिए मौजूदा सैन्य तकनीकी सहयोग और सह उत्पादन तथा सह विकास पहलों को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा की है। सैन्य तकनीकी सहयोग और रक्षा उद्योग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 24वीं कार्य समूह की बैठक के उद्घाटन सत्र का आयोजन आज नई दिल्ली में किया गया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इनमें भारतीय कंपनियां इंफोसिस, TCS, विप्रो और SCL के अलावा कॉग्निजेंट, कैम जेमनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
3: रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर लागू इस नए प्रतिबंध के बाद अमेरिका के श्रम मंत्री कीथ सैंडलिंग ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ चल रही संघीय जांच के बाद ये कदम उठाया गया है। PIRM नाम की ये प्रक्रिया उन नियोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है जो विदेशी कर्मचारियों के लिए ग्रीन कार्ड हासिल करना चाहते हैं। उपराष्ट्रपति JD Vance ने आरोप लगाया कि ये कंपनियां

0: विदेशी कर्मचारियों को कम वेतन पर नियुक्त कर अमरीकी कर्मचारियों की जगह लेने के लिए इस व्यवस्था का इस्तेमाल कर रही हैं। हालांकि अमरीकी प्रशासन ने अब तक कंपनियों के खिलाफ जांच के निष्कर्ष या कथित उल्लंघनों का विस्तृत ब्यौरा जारी नहीं किया है। ये रोक PIRM आवेदनों पर लागू होगी। इससे मौजूदा H1B वीजा या ग्रीन कार्ड अपने आप रद्द नहीं होंगे। इस बीच माइक्रोसॉफ्ट ने इन आरोपों को खारिज किया है। कंपनी ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में उसके द्वारा दाखिल लगभग 6000 H1B आवेदनों में से 80% मौजूदा कर्मचारियों के वीजा की अवधि बढ़ाने या उनकी स्थिति में बदलाव से संबंधित थे। इनमें नए कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित मामले शामिल नहीं थे। कंपनी ने बताया कि शेष आवेदन ऐसे लोगों के लिए थे जो पहले से ही अमरीका में कानूनी रूप से रह रहे थे। इन आवेदनों के जरिए की गई नई नियुक्तियां अमरीका में कंपनी के कुल कर्मचारियों का लगभग 1% थी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं यशस्वी किरियाल।
1: इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति J.D. वेंस ने कहा है कि अमेरिका केवल असाधारण प्रतिभा वाले विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवर्जन कार्यक्रमों का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए नहीं होना चाहिए। श्री वेंस ने कहा कि अमेरिका असाधारण कौशल और क्षमता वाले विदेशी नागरिकों का स्वागत करता है, लेकिन H1B वीजा कार्यक्रम अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है। उन्होंने कहा कि विदेशी पेशेवरों के आवेदनों पर विचार करते समय आवर्जन अधिकारियों को दो कसौटियों पर ध्यान देना चाहिए। पहली, क्या संबंधित पद पर कोई ऐसा काम है जिसे अमरीकी कर्मचारी नहीं कर सकते, और क्या आवेदक में असाधारण क्षमताएं हैं। श्री वेंस ने कहा कि अमरीकी प्रशासन नवाचार और आर्थिक विकास में योगदान देने वाले विदेशी पेशेवरों के खिलाफ नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला सहित 6 प्रमुख प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को वैज्ञानिक उपलब्धियों और तकनीकी नवाचार के लिए सर्वोच्च अमरीकी पुरस्कारों से सम्मानित किया है। श्री ट्रंप ने उनके योगदान को विश्व स्तर पर अमरीका के लिए महत्वपूर्ण बताया। श्री ट्रंप ने न्यू गोल्डन एज समिट में सत्य नडेला और डेल टेक्नोलॉजीज के संस्थापक माइकल डेल को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक प्रदान किया। इटली की संसद ने देश की चुनावी प्रक्रिया में व्यापक बदलाव को मंजूरी दी है। इससे प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक जीत मिली है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: इस प्रस्ताव को व्यापक रूप से इटली की राजनीतिक प्रणाली को मजबूत करने और प्रधानमंत्री मेलोनी के नेतृत्व वाले मध्य दक्षिण पंथी गठबंधन की चुनावी संभावनाओं को बेहतर बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। पिछले महीने इस गठबंधन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली की सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार होने का रिकॉर्ड बनाया था। सदन ने गुप्त मतदान में 227 वोटों के मुकाबले 164 वोटों से इस विधेयक को मंजूरी दे दी। इससे महीनों की गर्मागर्म बहस के बाद इस कानून को अंतिम संसदीय मंजूरी मिल गई। इस उधार में एक बड़ा बहुमत पुरस्कार शामिल है। इसके अंतर्गत चुनाव पूर्व विजयी गठबंधन को संसद के दोनों सदनों में अतिरिक्त संसदीय सीटें दी जाएंगी, बशर्ते उसे कम से कम 42% राष्ट्रीय वोट प्राप्त हों। नए कानून के अंतर्गत इटली की मौजूदा मिश्रित चुनावी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में भारतीय डाक विभाग बहादुरी का परिचय देने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर के सम्मान में एक विशेष समारोह आयोजित कर विशेष आवरण जारी करेगा। कैप्टन ने पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान में सवार 174 लोगों की जान बचाई थी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की PV सिंधु का सामना थाईलैंड की रचानोक इंतानोन से होगा। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में कल जापान की रिको गुंजी को हराया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब में हवाई अड्डों पर हमले किए। भारत ने हमलों की निंदा की, कहा नागरिक सुविधाओं को निशाना बनाना अनुचित। भारत ने अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह किया। अमेरिका ने 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रिया रोकी। इसका उद्देश्य केवल असाधारण विदेशी प्रतिभाओं को आकर्षित करना है। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। और आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की PV सिंधु का सामना थाईलैंड की रचानोक इंतानोन से होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: சுகமான ராகங்கள் நிறைவு பெற்றது. தொடர்வது செய்திகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கனகலதா. तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनावों की मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल की रेजीनगर में भाजपा उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जबकि तमिलनाडु की मदुरांतकम सीट पर टीवीके और दारापुरम पर ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के उम्मीदवार ने बढ़त बनाई हुई है। असम की लोकसभा सीट नगांव पर हुए उपचुनाव की मतगणना में भाजपा उम्मीदवार आगे है। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर गिनती के दूसरे दौर के बाद ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक आनंद इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनगयम से 4000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। इन सीटों पर मंगल

0: पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर गिनती के दूसरे दौर के बाद ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक आनंद इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनगयम से 4,000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद के नए कर सुधारों का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री, सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगी। बातचीत मुख्य रूप से व्यापार, निवेश, डिजिटल फाइनेंस, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और कौशल विकास पर केंद्रित होगी। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आने की संभावना है। केरलम में भारतीय डाक विभाग बहादुरी का परिचय देने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार के सम्मान में एक विशेष समारोह आयोजित कर विशेष आवरण जारी करेगा। कैप्टन स्मिथ ने पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अबीब जा रही फ्लाई दुबई विमान में सवार 174 लोगों की जान बचाई थी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने राष्ट्र के प्रति डाक की समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। श्री सिंधिया ने कहा कि डिजिटल संचार के इस युग में भारतीय डाक सेवा लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बदलाव का प्रयास कर रहा है। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाजी वाड़ी में कल रात पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और उत्तराखंड में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will participate in the valedictory session of the Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi this evening. The two-day event, which began yesterday, is witnessing the participation of political leadership and officials dealing with the women and child development sector from all states. It is the second in a series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen cooperative federalism, foster collective ownership of national priorities,

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கனகலதா. रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दिल्ली में दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर भारी यातायात की आशंका को देखते हुए लिया गया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
2: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।

संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है। यह निर्णय नई दिल्ली क्षेत्र में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात नियमों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल कर ली है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 8,482 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम सीटों पर सत्तारूढ़ टीवीके के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया

पुरम सीटों पर सत्तारूढ़ टीवीके के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत के दूर संचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट EDAR, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। ब्रिटेन का प्रतिनिधिमंडल 12 से 16 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर रहेगा। इसमें उत्तरी इंग्लैंड के विभिन्न हिस्सों से करीब 200 प्रतिनिधि शामिल होंगे। ग्रेट नॉर्थ ट्रेड मिशन का उद्देश्य भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA के अंतर्गत व्यापार तथा निवेश के अवसर तलाशना है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय विदेश सेवा दिवस के अवसर पर विकसित भारत के संकल्प और देश तथा उसके नागरिकों की सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 756 अंक बढ़कर 72,350 पर, जबकि निफ्टी 253 अंक बढ़कर 22,485 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

மதனி தரி நிதனி தமகி தரி நிதமகி சரி சரி கமத இமா

தகதரி

அபயம் தந்தருளவர் தகிடது கிடதி மிதஜம் தகிடது கிடதி மிதஜம்

0: major technology and outsourcing companies, including Indian firms Infosys, TCS, Wipro and HCL. The action also covers Cognizant, Capgemini, Microsoft and Adobe. In cricket, India will take on the West Indies in the second of the five-match T20 international series in Ranchi today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian time. India lead the series 1-0 after winning the opening match, with skipper Shreyas Iyer's century powering the hosts to victory. The India Meteorological Department IMD forecast heavy rainfall accompanied by thunderstorms, lightning and gusty winds over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. Heavy rainfall is also likely to prevail over south interior Karnataka and Uttarakhand during the day. IMD said Lakshadweep, Bihar, Andhra Pradesh, East Madhya Pradesh, Jharkhand, Odisha, West Bengal and Sikkim are also expected to witness thunderstorms, lightning and gusty winds today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Delhi police declines permission for protest at Jantar Mantar tomorrow. 57 metro stations in Delhi may remain closed from 9 p.m. today till tomorrow. All mail and express trains scheduled to arrive at New Delhi and Hazrat Nizamuddin railway stations between 4 a.m. and 2 p.m. tomorrow stand cancelled at source stations. Prime Minister Narendra Modi to participate in valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi this evening. All India NR Congress wins the Tan Chowdhury Assembly constituency in Puducherry, counting on 4 Assembly seats and 1 Lok Sabha seat underway. Ministry of External Affairs clarifies US suspension of PERM applications does not affect H-1B visas. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी रद्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट जीती 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी विदेश मंत्रालय ने कहा अमेरिका के पीईआरएम आवेदनों पर लगाए गए प्रतिबंध से मौजूदा H-1B वीजा की वैधता प्रभावित नहीं होगी और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा अब समाचार विस्तार से दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है
2: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था
1: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है संयुक्त पुलिस आयुक्त ने चेतावनी दी है कि कानून का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करेगी दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर आज रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने का प्रस्ताव दिया है पुलिस ने इस संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजा है पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में संवेदनशील स्थानों की ओर भीड़ के अनियंत्रित रूप से बढ़ने की आशंका व्यक्त करते हुए मेट्रो ट्रेनों की संख्या और फेरों को कम करने का भी अनुरोध किया है जिन मेट्रो स्टेशनों

0: प्रतिबंध का प्रस्ताव है उनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये प्रतिबंध आज से लागू करने का प्रस्ताव है और स्थिति सामान्य होने तक कल तक जारी रह सकते हैं। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर यातायात की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। इस बीच विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान मध्य दिल्ली में यातायात प्रतिबंधों के चलते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़कें बंद होने से कल करीब 5,000 यात्री स्टेशन तक नहीं पहुंच सके। प्रभावित यात्रियों में आईआईटी जोधपुर के 56 छात्र भी शामिल थे जो शाम 4 बजे रवाना होने वाली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस नहीं ले सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कनॉट प्लेस एक रेस्तरां में आयोजित दोपहर के भोज के बाद विपक्षी सांसद और कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए राजघाट पर एकत्र हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत के दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। उन्होंने बताया कि 1 GB डेटा की कीमत 268 रुपये से घटकर 8 रुपये से भी कम रह गई है।
3: 550 मिलियन यूजर्स। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। इसके बाद भारत पूरी तरह 5G तकनीक पर आधारित नेटवर्क की ओर बढ़ेगा। ये तकनीक 6G की शुरुआत का रास्ता तैयार करेगी। 6G के लिए भारत पहली बार वैश्विक स्तर पर तकनीकी मानक तय करने की प्रक्रिया में शामिल होगा। इंडिया हैज अराइव्ड ऑन द स्टैंडर्ड
0: सेटिंग टेबल। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज सूरत में वस्त्र उद्योग से जुड़े उद्यमियों के साथ बैठक की। इस दौरान स्थानीय उद्योगपतियों ने उन्हें विभिन्न मांगों और सुझावों से जुड़े ज्ञापन सौंपे। श्री सिंह ने देश के प्रमुख विस्कोस वितरकों और बाजार विकास से जुड़ी कंपनियों के निदेशकों से भी मुलाकात की। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल की है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 8,482 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। तमिलनाडु के वदुरांतकम और दारापुरम सीटों पर सत्तारूढ़ टीवीके के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। एक रिपोर्ट।
4: इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, EDAR, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा

0: सूचना ब्यूरो शामिल हैं। इनके जुड़ने से दुर्घटना की रिपोर्ट, गाड़ी और बीमा के रिकॉर्ड और पहले के दावों के बारे में जानकारी को आसानी से साझा किया जा सकेगा। इसमें हिट एंड रन के मामले और प्रधानमंत्री राहत योजना भी शामिल होगी। न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बिना देरी किए EDAR पोर्टल पर जरूरी डेटा अपलोड करें, क्योंकि अभी तक कुछ ही राज्यों ने ऐसा करना शुरू किया है। न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कुछ बीमा कंपनियों के प्रमुखों को न्यायालय के पिछले निर्देशों का पालन न करने के लिए अवमानना का नोटिस भी जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: सरकार ने डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं के विज्ञापनों पर नियंत्रण करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत अनुसूची HH1 और अनुसूची X में शामिल दवाओं के विज्ञापन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेने की मौजूदा अनिवार्यता को दवाओं की बिक्री और वितरण का लाइसेंस रखने वाली संस्थाओं पर भी लागू करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करने तथा उन्हें समान अवसर देने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की थी। पिछले एक दशक में यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
2: भारत में लंबे समय तक कन्या भ्रूण हत्या, लिंग आधारित भेदभाव और बेटियों की शिक्षा में असमानता जैसी गंभीर सामाजिक चुनौतियां रही है। इनसे निपटने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। इसका मूल मकसद केवल बेटी को बचाना नहीं बल्कि उसके जीवन, सुरक्षा, शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करना है। इसके तहत लिंग आधारित भ्रूण हत्या की रोकथाम, लिंगानुपात में सुधार, बेटियों के स्कूल में नामांकन और माध्यमिक स्तर और आगे की पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहित करना, सुरक्षित मातृत्व तथा मासिक धर्म, स्वच्छता के प्रति जागरूकता जैसे विषयों पर काम करना है। योजना में सरकार, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाओं और समुदाय को साथ लेकर व्यवहार एवं सामाजिक सोच में बदलाव पर जोर दिया जा रहा है। पिछले एक दशक में इस योजना से बेटियों के प्रति आम लोगों की सोच और उनके शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार देखने को मिला है। देश में जन्म के समय प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 2014-15 में 918 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 929 हो गई। वहीं माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 75.51% से बढ़कर 80.2% तक पहुंच गया है। संस्थागत प्रसव भी 61 से बढ़कर 98% से अधिक हो गया है। इस योजना से राजस्थान में भी व्यापक बदलाव आया है। प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात 929 से बढ़कर एक दशक में 941 हो गया है। राज्य में बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाकर समाज में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि बेटी बोझ नहीं बल्कि परिवार और समाज की ताकत है। 10 साल पहले शुरू हुआ यह अभियान आज केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि बेटियों के सम्मान और समान अवसर का सामाजिक संदेश बन चुका है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने दोहराया कि डाक सेवा जन सेवा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा कुछ कंपनियों के स्थायी श्रम प्रमाणन PERM कार्यक्रम पर लगाई गई रोक H1B वीजा कार्यक्रम से पूरी तरह अलग है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि PERM आवेदनों पर रोक लगाने से मौजूदा H1B वीजा की वैधता या H1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि इससे प्रभावित कंपनियों के पात्र कर्मचारियों को ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया पर कुछ असर पड़ सकता है। इस मामले में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के टिप्पणियों का जिक्र करते हुए मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी अनुचित है। भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार को इसराइल के सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान से सम्मानित किया

0: किया जाएगा। इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने घोषणा की कि कैप्टन मच्छार के स्वस्थ होने के बाद उन्हें नागरिक वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 878 अंक बढ़कर 72,471 पर, जबकि निफ्टी 282 अंक की उछाल के साथ 22,514 पर था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल तक तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। दक्षिण आंध्रीय कर्नाटका और उत्तराखंड में भी आज ऐसी स्थिति रह सकती है। इस बीच कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: நேரம் 2:30 ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலி 100.1 FM கோல்ட்.

0: మరికొద్ది క్షణాల్లో వార్తలు ప్రసారమవుతాయి. టెలినిజ్ రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాత్ మే ప్రియాంక అరోడా. दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है. नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है.
2: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग. इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है. जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था.
1: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पार्टी द्वारा पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और स्वयं की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने तथा कानून व्यवस्था की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला लिया गया. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है. दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे. इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपद, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस समेत अन्य स्टेशन शामिल हैं. नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी. ये पाबंदी अगले आदेश तक लागू रहेगी. उधर रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे. कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं. एक रिपोर्ट.
3: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है. सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं. विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं. प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं. इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है. यात्रा के दौरान वित्त मंत्री सिंगापुर के राष्ट्रपति तरमन षणमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगी. बातचीत मुख्य रूप से व्यापार, निवेश, डिजिटल, वित्त, सेमीकंडक्टर, उन्नत विनिर्माण और कौशल विकास पर केंद्रित होगी. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पण

समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने दोहराया कि डाक सेवा जन सेवा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल संचार के इस युग में भारतीय डाक सेवा लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बदलाव का प्रयास कर रहा है। अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा कुछ कंपनियों के स्थायी श्रम प्रमाणन PERM कार्यक्रम पर लगाई गई रोक H-1B वीजा कार्यक्रम से पूरी तरह अलग है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि PERM आवेदनों पर रोक लगाने से मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: scheduled to begin at 7 p.m. Indian time. India lead the series 1-0. And that is the end of this news bulletin.
1: நேரம் 4:10. ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலி நிலையம் 100.1 FM கோல்ட்.
2: நமஸ்கார், மேன் ஹூ கைலாஷ் கேர் ஓர் ஆகாஷ்வாணி கே சபி ஸ்ரோதாவோ கோ மேரா பாரம்பார் பிரணாம் ஓர் பாரத் கி சேனா கோ சமர்ப்பித் யே மேரா கீத் பாரதிய சேனா ஜோ தீனோ சேனாவோ கோ சமர்ப்பித் ஹை ஹர் தேஷ்வாசி கோ சமர்ப்பித் ஹை तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूँ। मैं हूँ आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: post of stenographer grade 1 on deputation basis. The post carry pay level 6 as per the 7th CPC. Eligible central government officials holding an analogous post on a regular basis or having 10 years of regular service in pay level 4 or equivalent may apply, subject to the prescribed conditions. The maximum age limit is 56 years. Detailed eligibility criteria, terms and conditions and the prescribed application performer is available on the Income Tax Department website. Applications must be submitted through the proper channel and should reach the Commissioner of Income Tax, Admin and TPS before 30th October 2026. For details, kindly look up the website at www.tnincometax.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड में प्रबंधक विधि का एक पद भरा जाना है। ऊपरी आयु सीमा है 50 वर्ष। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.jkdfc.org। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। प्रधान परामर्शक, वरिष्ठ परामर्शक, वरिष्ठ परामर्शक जनसंपर्क एवं मीडिया, वरिष्ठ परामर्शक विधि निदेशालय इन स्पेस तथा तकनीकी सहायक और कनिष्ठ परामर्शक तकनीकी निदेशालय। विस्तृत विज्ञापन के लिए देखिए वेबसाइट www.inspace.gov.in। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अगरतला इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। तकनीकी सहायक, जूनियर इंजीनियर, लाइब्रेरी और सूचना सहायक, एसएएस सहायक, फार्मासिस्ट, सीनियर टेक्नीशियन, टेक्नीशियन और लैब अटेंडेंट। इच्छुक उम्मीदवार विस्तृत जानकारी के लिए देख सकते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अगरतला की वेबसाइट nita.ac.in। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत ग्रुप बी एवं ग्रुप सी के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इन पदों पर नियुक्ति परिषद के अंतर्गत अखिल भारतीय स्थानांतरण दायित्व यानी ऑल इंडिया ट्रांसफर लायबिलिटी के अधीन होगी। नियुक्त कर्मचारियों को BMHRC के कर्मचारियों के अनुसार लागू नियम के मुताबिक सामान्य भत्ते और अन्य सुविधाएं देय होंगी। विस्तृत विज्ञापन, पदों के विवरण, शैक्षणिक एवं अन्य पात्रता मानदंड तथा आवेदन प्रक्रिया की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.bmhrc.ac.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान मैदानगढ़ी नई दिल्ली में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। मुख्य नर्सिंग अधिकारी, सहायक परीक्षा नियंत्रक, वरिष्ठ भंडार अधिकारी, अधिशासी अभियंता, अधिशासी अभियंता वातानुकूलन, प्रशासनिक अधिकारी, लेखाधिकारी, भंडार अधिकारी और सहायक अभियंता वातानुकूलन एवं प्रशीतन। अनिवार्य पात्रता शर्तों, अन्य विवरणों और नियम और शर्तों के लिए देखिए एम्स की वेबसाइट www.aims.edu। इसके अतिरिक्त इस वेबसाइट पर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं www.aims.exams.ac.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में। श्रोताओं, ये हमारे लिए ढलती हुई शाम, दिन भर की भागदौड़ और इन सब के बीच ठहर कर आपसे रूबरू होने का खूबसूरत वक्त है। शाम का ये वक्त हमें सिखाता है कि सूरज चाहे कितना भी तपा हो, आखिर में उसे शांत होना ही पड़ता है। इसी विचार के साथ आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के आज के अंक की। मैं हूँ सरफिरोजी और मेरे साथ हैं रेनू कटारिया। नमस्कार रेनू।
2: नमस्कार, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा 100.1 एफएम गोल्ड। डियर लिसनर्स, आई एम रेनू कटारिया एंड विद मी टुडे इज ऑफ कोर्स माय को होस्ट सर फिरोजी। सो बिफोर वी बिगिन द अदर सेगमेंट्स सर फिरोजी, लेट्स बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस एट दिस आवर। Delhi police declines permission for protest at Jantar Mantar tomorrow. 57 metro stations in Delhi to remain closed from 9 pm today till tomorrow.
1: नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी अपने शुरुआती स्टेशन से रद्द।
2: Prime Minister Narendra Modi to participate in valedictory session of departmental summit on women and child development in New Delhi this evening.
1: All India NR Congress ने पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए मतगणना जारी।
2: Ministry of External Affairs clarifies US suspension of PERM applications does not affect H1B visas.
1: और भारत वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा।
2: And now, dear listeners, it is time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today, we are going to talk about the World Post Day.

0: श्रोताओं, डाकिया सिर्फ डाक नहीं लाता बल्कि वो चिट्ठी में बंद किसी के सुख या दुख को सीधे दूसरे इंसान तक पहुंचाता है। और एक चिट्ठी में सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि उम्मीद और अपनापन भी होता है। और आज हम आपको चिट्ठियों के उसी दौर में ले जा रहे हैं। लेकिन रेनु, आज डाक और डाकियों की बात क्यों हो रही है?
1: क्योंकि आज वर्ल्ड पोस्ट डे है
0: जी,
1: एंड द वर्ल्ड पोस्ट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 9th अक्टूबर, मार्किंग द एनिवर्सरी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इन 1874 इन बर्न, स्विट्जरलैंड। इट वाज इन 1969 ड्यूरिंग द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस हेल्ड इन टोक्यो, जापान, दैट 9th अक्टूबर वाज डिक्लेयर्ड वर्ल्ड पोस्ट डे। एंड वी हैव मोर ऑन दिस इन दिस रिपोर्ट।
2: Recognized across over 150 countries, World Post Day highlights the crucial role of postal services in connecting people, supporting international commerce, and enabling secure information exchange. From handwritten letters to digital logistics, the postal system remains a vital link that bridges both distances and cultures, making World Post Day significant for communities, businesses, and governments across the globe. The theme for this year is One Postal Network, Infinite Possibilities. This year's campaign celebrates the strength of a united global postal network and the many possibilities it creates for people, businesses, and communities. From connecting individuals to delivering essential services, the post continues to open doors to opportunities around the world. The purpose of World Post Day is to create awareness of the role of postal sector in people's and businesses every day, and

0: This contribution to the social and economic development of countries. This is Sanyukta Yadav for Parikrama.
1: और रेनू, आज का जो युग है वो पूरी तरह से अब कह सकते हैं कि डिजिटल युग बनता जा रहा है, लेकिन इस बीच भी डाक व्यवस्था जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनी हुई है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये बातचीत, व्यापार और ज़रूरी सेवाओं तक पहुंचने में मदद करती है, और ख़ास तौर पर दूर दराज के इलाकों में।
2: That's so right, Sir Firozi. In today's world of smartphones, social media and artificial intelligence, communication has become faster than ever. But have you ever wondered how people stayed connected before the internet and mobile phones existed?
1: बिल्कुल रेनु, सदियों से दुनिया भर के लोगों को जोड़ने में चिट्ठियों और संदेश वाहकों ने अहम भूमिका निभाई है। जब इस तरह के जो सोशल मीडिया या कह लें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी तब एग्जिस्ट नहीं करती थी। मिस्र, चीन, फारस और रोम जैसी प्राचीन सभ्यताओं में शाही आदेशों, व्यापार से जुड़ी जानकारी और जरूरी संदेशों को साझा करने के लिए लिखित संदेशों का इस्तेमाल किया जाता था।
2: Absolutely, Sir Firozi. Letters were also a way to express love, share emotions and maintain relationships across long distances. और यही वो सारी चीजें हैं जो हम आज के युग में मिस कर रहे हैं। बिल्कुल। During wars, letters helped soldiers stay connected with their families and gave them hope and comfort in difficult times. Times.

0: और रेनु, जो इस गाने के बोल हैं वो सीधे तौर पर ये बताते हैं कि कलम से कागज़ पर उतारे गए शब्द किसी की यादों और गहरे एहसासों का नतीजा होते हैं, और यहीं पर डाक व्यवस्था काम आती है। डाकघर एक ज़रूरी संस्था बन गया है जिसने लोगों को चिट्ठियां, पार्सल और ज़रूरी दस्तावेज भेजने और पाने में मदद करता है। डाक कर्मचारी डाक को छांटते हैं, व्यवस्थित करते हैं ताकि संदेश सही जगह तक पहुँच सके।
1: But the post office does much more than deliver letters. It also provides services such as parcel delivery, money-saving schemes, bill collection, and other essential public services. With the growth of online shopping, postal networks have become even more important in delivering packages to people around the world.
0: बिल्कुल रेनु, आज के दौर में जब इंस्टेंट मैसेजेस और वीडियो कॉल का बोलबाला हो रहा है, इस बीच बहुत से लोग अकेलेपन और सामाजिक अलगाव का भी अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी हमें तेजी से आपस में जोड़ तो रही है, लेकिन ये हाथ से लिखे हुए खतों के एहसास की जगह कभी भी नहीं ले पाएगी।
1: सो ट्रू सर फिरोजी, अ लेटर इज मोर देन जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। इट कैरीज इमोशंस, मेमोरीज एंड अ पर्सनल कनेक्शन दैट कैन लास्ट फॉर इयर्स। रिसीविंग अ handwritten letter can be a truly special experience.

0: बिल्कुल रेनू, जो खत होते हैं वो केवल कागज के टुकड़े नहीं होते, बल्कि जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो जो हमारे चाहने वाले होते हैं उनका चेहरा इस तरह लगने लगता है कि हमारे सामने ही मुस्कुरा रहा होता है या शर्मा रहा होता
1: एंड
0: है।
1: सर फिरोजी, वी आई स्पेशली रिमेम्बर व्हेन वी वर किड्स एंड वी वर इन स्कूल, तो हमें लेटर्स लिखने के लिए एक और बहुत प्रेरणा दी जाती थी,
0: जी
1: जिसमें हमें बोला जाता था कि यू हैव टू मेक अ पेन फ्रेंड। तो उसमें दो चीजें होती थी, एक तो आप एक फ्रेंड अपना बनाते थे और एक आपको लेटर्स कैसे, बिकॉज यू नो देर आर देर अ फर्स्ट ड्राफ्ट, देर अ सेकेंड ड्राफ्ट एंड देर अ फाइनल ड्राफ्ट। एक लेटर सिर्फ ऐसे ही कुछ लिख देना लेटर नहीं होता है, आपको उसको
0: बहुत शब्दों को प्यार से पिरोना
1: पड़ता है। फिर आप सिनोनिम्स ढूंढते हैं कि अगर ये वाला वर्ड यहाँ सूट नहीं कर रहा है तो क्या कोई और वर्ड आ सकता है। सो देर आर वेज टू राइट लेटर्स, और उस तरीके से हमें स्कूल में वो सिखाया जाता था। एंड टॉकिंग अबाउट, यस लेट्स लिसन टू अनदर सॉन्ग ओवर हियर फर्स्ट।
0: बिल्कुल।

0: और रेनू, अब समय हो चला है अपने श्रोताओं को देश भर की परिक्रमा पर लेकर चलने का। तो सबसे पहले कहाँ चल रही हैं?
1: लेट्स गो टू केरला
0: जी।
1: और केरलम, इन केरलम द विमेन ऑन द मूव एंड मेंस्ट्रुअल नीड्स स्कीम विच प्रोवाइड सैनिटरी नैपकिंस टू विमेन एंड गर्ल्स एट लो प्राइसेस ड्यूरिंग ट्रैवल हैज बीन लॉन्च्ड अ रिपोर्ट।
2: The scheme aims to make sanitary products easily available to women travelers in public places. Sanitary napkin vending machines and incinerators for the environmentally friendly disposal of used napkins were recently installed at public places such as KSRTC, bus terminals and depots in all 14 districts. In the second phase of the scheme implemented to solve the problems of women and girls during travel, it will be implemented in all tourist destinations in the state. A packet containing 3 sanitary napkins costs rupees 10. The project was implemented in collaboration with Hindustan Latex Limited under the leadership of the Women and Child Development Department. The project was implemented at major KSRTC stations including Kozhikode. It has been decided to provide necessary training to the sanitation workers of KSRTC to fill the machines with napkins and clean the incinerators. Suresh VK for Parikrama, Akashvani News, Kozhikode.
0: और श्रोताओं, आपको लेकर चल रहे हैं लद्दाख, जहां ICDS प्रोजेक्ट करगिल की ओर से कल

0: Hero of the Jallianwala Bagh protests against the draconian Rowlatt Act of 1919. Dr. Kichlu was also a founding leader of the Naujawan Bharat Sabha, which rallied thousands of students and young Indians to the nationalist cause. He was born on 15th January in 1888 in a Kashmiri family which had moved to Amritsar. A student of sharp intellect, Kichlu completed his bachelor's from Cambridge University in London and obtained his PhD from Germany.
1: His revolutionary aspirations dated back to his Cambridge days, when he actively participated in Majlis, a society formed by Indian students to discuss India's colonial wars. It was through these meetings that he met India's future Prime Minister, Jawaharlal Nehru. Kichlu returned to India in 1913 and started practicing law in Amritsar. Professor Amandeep Bal, head of the Department of History in Guru Nanak Dev University, Amritsar, says, after his return from abroad, one thing that stood out vividly was Dr. Kichlu's devotion and love for the nation.
2: प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, कवि और साहित्यकार गोपबंधु दास की भी आज जयंती है। ये ओडिशा के प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता थे। गोपबंधु दास को उत्कल मणि के नाम से भी जाना जाता है। ओडिशा में इन्हें दरिद्र सखा के रूप में याद किया जाता है। गोपबंधु दास ने उत्कल के विभिन्न अंचलों को संगठित कर पूर्ण उड़ीसा राज्य बनाने के लिए प्राण प्रण से प्रयास किया। उत्कल के दैनिक पत्र समाज के संस्थापक भी ये रहे। वर्ष 1909 गोपबंधु दास ने साक्षी गोपाल में एक हाई स्कूल की स्थापना की। ये विद्यालय शांति निकेतन की भांति खुले वातावरण में शिक्षा देने का एक नया प्रयोग साबित हुआ। और आज ही जयंती है भारतेंदु हरिश्चंद्र युग से पूर्व की हिंदी गद्य शैली के प्रमुख साहित्यकार रहे राजा लक्ष्मण सिंह की भी। राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म 9 अक्टूबर को आगरा में हुआ था। इन्होंने हिंदी को हिंदी संस्कृति के अनुकूल संस्कृत निष्ठ बनाने के लिए प्रयास किया। इन्होंने आगरा से हितैषी पत्र निकाला। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश एवं मेघदूतम का हिंदी में अनुवाद किया।
3: एंड टुडे वी आर रिमेम्बरिंग जॉन विंस्टन ओनो लेनिन, हु वाज बोर्न ऑन दिस डे इन 1940। ही वाज एन इंग्लिश सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड पीस एक्टिविस्ट हु गेन्ड वर्ल्ड वाइड फेम एज द फाउंडर, co-lead vocalist and rhythm guitarist of the Beatles. His songwriting partnership with Paul McCartney remains the most successful in history, and here we're going to listen to both of them singing I Want to Hold Your Hand.

आज हम सुप्रसिद्ध सरोद वादक अमजद अली खां को भी याद कर रहे हैं। 9 अक्टूबर 1945 को ग्वालियर में जन्मे अमजद अली खां सेनिया घराने से संबंधित हैं। 1963 में जब वे 18 वर्ष के थे तब उन्होंने अपनी प्रस्तुति के लिए अमेरिका की पहली यात्रा की। इस दौरान पंडित बिरजू महाराज के नृत्य दल की प्रस्तुति के साथ अमजद अली खां का सरोद वादन भी हुआ। इन्होंने

1971 में द्वितीय एशियाई अंतर्राष्ट्रीय संगीत सम्मेलन में भाग लिया और जहां इन्हें रोस्टम पुरस्कार से नवाजा गया। यूनेस्को की ओर से पेरिस में आयोजित इस सम्मेलन में इन्होंने आकाशवाणी के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। संगीत सेवक और साधक अमजद अली खां को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी और न जाने कितने पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

0: आज हम सुप्रसिद्ध संगीतकार और गायक रविंद्र जैन को भी याद कर रहे हैं। रविंद्र जैन की प्रसिद्धि विशेषकर भजन गायक के रूप में रही। रविंद्र जैन मधुर धुनों के रचनाकार के साथ साथ बेहतरीन गायक भी थे। ये 1968 में मुंबई आए, जहां इनकी मुलाकात लोकप्रिय गायक मुकेश से हुई। उनका संगीतबद्ध किया पहला फिल्मी गीत 14 जनवरी 1972 को रिकॉर्ड किया गया था। और रेनू, यू नो अब शाम ढल रही है, सुहानी सुहानी हवा चल रही है, एक ट्रांजिशन जो है शाम से रात की ओर हो रहा है, तो उस पर बिल्कुल एक गाना रविंद्र जैन का है जो बहुत अच्छी तरह इस ट्रांजिशन को दिखाएगा।
1: जी बिल्कुल, सुनते हैं।

0: आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये पाबंदी अगले आदेश तक लागू रहेगी। वहीं रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि स्टारलिंक, जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और यूटेलसैट वन वेब सहित 3 कंपनियों को सैटेलाइट संचार लाइसेंस दिए गए हैं। नई दिल्ली में श्री सिंधिया ने कहा कि सरकार राजस्व साझाकरण के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्रों में समुद्र की सतह का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और इथियोपिया की रणनीतिक साझेदारी साझा मूल्यों, समान आकांक्षाओं और विकासशील देशों के बीच ऐतिहासिक एकजुटता पर आधारित है। डॉ. जयशंकर ने इथियोपिया के विदेश मंत्री गिदियोन तिमोथियोस हेसेबॉन के साथ आज राजधानी अदिस अबाबा में बैठक की। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान व्यापार, निवेश, विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में जीत हासिल कर ली है। उधर तमिलनाडु की दारापुरम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में TVK ने जीत हासिल की है, जबकि मधुरंतकम सीट पर TVK आगे चल रही है। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया NR कांग्रेस ने जीत हासिल की। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 889 अंक बढ़कर 72,472 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 289 अंक की वृद्धि के साथ 22,520 पर पहुंच गया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: நேரம் மாலை 6:05. ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலி 100.1 FM கோல்ட்.
2: இன்வெஸ்டிங்கோட பாடத்தை ஆரம்பிக்கலாமா?

0: नकद बाजारों में अपनी जगह बनाने के लिए सक्षम बनाना भी है। आज के विश्लेषण में हम तीन रिपोर्टों के जरिए समझेंगे कि राष्ट्रीय SC/ST हब कैसे काम करता है, इसके तहत उद्यमियों को किस तरह की सहायता मिलती है और इस योजना से जुड़े कुछ उद्यमों ने बाजार में अपनी पहचान कैसे बनाई है। आइए सुनते हैं विशेष रिपोर्ट।
1: भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME क्षेत्र रोजगार और आर्थिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण आधार है। इस क्षेत्र में अधिक से अधिक समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना समावेशी विकास के लिए जरूरी है। इसी उद्देश्य से 18 अक्टूबर 2016 को राष्ट्रीय SC/ST हब योजना की शुरुआत की गई। ये योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी NSIC द्वारा लागू की जाती है। इसका प्रमुख उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को अपना कारोबार बढ़ाने और सरकारी खरीद की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना है। इसके तहत उद्यमियों को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, व्यवसाय विकास, नेटवर्किंग और बाजार से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाता है। योजना की प्रगति से जुड़े आंकड़े भी इसके बढ़ते दायरे को दर्शाते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 47 संस्थानों के माध्यम से 27 राज्यों में 10,717 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया। इनमें 24 आकांक्षी जिले भी शामिल थे। प्रशिक्षित उम्मीदवारों में 55% महिलाएं थीं। इस तरह योजना का प्रयास उद्यमियों को केवल प्रशिक्षण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसी क्षमताएं विकसित करने में मदद देना भी है जिनसे वे कारोबार के अवसरों का बेहतर तरीके से लाभ उठा सकें। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार।
0: प्रशिक्षण से लेकर पूंजी और बाजार तक पहुंच बनाने में सहायता देना राष्ट्रीय SC/ST हब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब जानते हैं कि ये सहायता योजनाएं उद्यमियों की व्यावहारिक जरूरतों को किस तरह पूरा करती हैं।
2: किसी छोटे उद्यम के लिए नई मशीन खरीदना, सरकारी निविदा में हिस्सा लेना या अपने उत्पाद को नए बाजार तक पहुंचाना बड़ी चुनौती हो सकती है। राष्ट्रीय SC/ST हब के अंतर्गत ऐसी ही जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई सहायता प्रावधान किए गए हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण पहल है विशेष ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी योजना, जिसे SCLCSS कहा जाता है। इसके तहत संस्थागत ऋण से खरीदी गई मशीनरी, उपकरण और अन्य पात्र पूंजी साधनों पर 25% पूंजी सब्सिडी दी जाती है। ये सहायता अधिकतम 25 लाख रुपए तक हो सकती है। इसका लाभ विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों के पात्र उद्यमों को मिल सकता है। मार्च 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत 3,160 सूक्ष्म और लघु उद्यमों को कुल 356,10,00,000 रुपए की सहायता मिली। इसका दायरा 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 233 जिलों तक पहुंचा। इसके अलावा एकल बिंदु पंजीकरण योजना यानी SPRS के माध्यम से उद्यमियों को सरकारी खरीद के अवसरों तक पहुंच बनाने में मदद मिलती है। सरकारी खरीद में MSME की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। सार्वजनिक खरीद नीति के तहत केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए अपनी वार्षिक खरीद का 25% MSME से करना निर्धारित है। बाजार तक पहुंच बेहतर बनाने के लिए विशेष विपणन सहायता योजना भी चलाई जाती है। इसके माध्यम से पात्र उद्यमियों को प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और विक्रेता विकास कार्यक्रमों में भाग लेने के अवसर मिलते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में 141 SC/ST उद्यमों को 4 घरेलू प्रदर्शनियों में भाग लेने में सहायता दी गई। योजना में कुछ अन्य खर्चों की प्रतिपूर्ति के प्रावधान भी हैं। इनमें पात्र बैंक ऋणों की प्रोसेसिंग फीस, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी शुल्क, उत्पाद परीक्षण और प्रमाणन शुल्क, निर्यात संवर्धन परिषद की सदस्यता तथा सरकारी ई कॉमर्स पोर्टल की सदस्यता से जुड़े खर्च शामिल हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य उद्यमियों के सामने आने वाली अलग अलग बाधाओं को कम करना है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: पूंजी, तकनीक और प्रशिक्षण कारोबार को मजबूत बनाने की नींव रखते हैं, लेकिन इनका वास्तविक लाभ तब सामने आता है जब उद्यमी बाजार में नए अवसर हासिल कर पाते हैं। आइए अब राष्ट्रीय SC/ST हब से जुड़े कुछ ऐसे उद्यमों की बात करते हैं जिन्होंने अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए इस सहायता का लाभ उठाया। आइए सुनते हैं विशेष रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय SC/ST हब के अंतर्गत बिजनेस एक्सेलरेटर प्रोग्राम यानी BAP उद्यमियों को व्यवसाय से जुड़े फैसलों में बेहतर तैयारी करने में मदद देता है। इस कार्यक्रम में कारोबारी

0: नीति, लागत और मूल्य निर्धारण, कामकाज की दक्षता तथा बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने जैसे विषयों पर मार्गदर्शन दिया जाता है। इसका उद्देश्य उद्यमियों को बाजार की जरूरतों को समझने, अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं में सुधार करने और सरकारी खरीद के अवसरों के लिए बेहतर तैयारी करने में सहायता देना है। पश्चिम बंगाल की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंजीनियरिंग इसका एक उदाहरण है। पीआईबी की एक तथ्य पत्रिका के अनुसार इस उद्यम से जुड़े देवाशीष मंडल ने कार्यक्रम के माध्यम से मूल्य निर्धारण, लागत प्रबंधन और बाजार में अपने कारोबार की स्थिति मजबूत करने पर काम किया। इसके बाद उनके उद्यम को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से 8,48,000 रुपए के टेंडर मिले। असम की रेनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की कहानी भी इसी दिशा में एक उदाहरण है। इस उद्यम से जुड़े भार्गव देओरी ने कारोबारी प्रक्रियाओं, रणनीतिक योजना और बाजार में अपनी पहचान मजबूत करने पर काम किया। कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी निविदाओं के लिए उद्यम की तैयारी और खरीद पोर्टलों के साथ जुड़ाव को बेहतर बनाने में सहायता मिली। इससे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कारोबारों के अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता मजबूत हुई। महाराष्ट्र के सावलाराम एंटरप्राइजेस का उदाहरण भी महत्वपूर्ण है। इस उद्यम से जुड़े सुनील पोपट्राव जगताप ने कारोबारी रणनीति और सरकारी खरीद प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने पर काम किया। ये उदाहरण दिखाते हैं कि किसी उद्यम को आगे बढ़ाने में केवल आर्थिक सहायता ही नहीं बल्कि कारोबारी समझ, उचित मूल्य निर्धारण, बेहतर प्रबंधन और बाजार की जरूरतों के अनुरूप भी महत्वपूर्ण तैयारी होती है। हालांकि किसी योजना की सफलता को केवल कुछ उदाहरणों के आधार पर आंका नहीं जा सकता। इसके लिए लाभार्थियों की संख्या, प्रशिक्षण, बाजार में भागीदारी और सरकारी खरीद जैसे व्यापक संकेतकों को भी देखना जरूरी है। राष्ट्रीय SC ST हब की प्रगति में सार्वजनिक खरीद का आंकड़ा एक महत्वपूर्ण संकेतक है। SC ST स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से सरकारी खरीद का मूल्य वित्त वर्ष 2015-16 में 99,37,00,000 रुपए था, जो वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 4,13,42,00,000 रुपए हो गया।
1: तो आज के विश्लेषण में हमने जाना कि राष्ट्रीय SC ST हब योजना किस तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने के लिए सहायता उपलब्ध कराती है। 18 अक्टूबर 2016 को शुरू हुई ये योजना प्रशिक्षण, तकनीकी उन्नयन, पूंजीगत सहायता, विपणन, मार्गदर्शन और सरकारी खरीद तक पहुँच जैसे विभिन्न पहलुओं पर काम करती है। वहीं सरकारी खरीद में बढ़ती भागीदारी ये समझने का एक महत्वपूर्ण आधार देती है कि उद्यमियों के लिए बाजार के अवसर कितने अहम हैं। लेकिन समावेशी उद्यमिता का लक्ष्य केवल उद्यम शुरू करने तक सीमित नहीं है। जरूरी ये भी है कि उद्यमी अपने कारोबार को टिकाऊ बना सकें, प्रतिस्पर्धा कर सकें और नए अवसरों का लाभ उठा सकें। जब वित्तीय सहायता के साथ कौशल, तकनीक और बाजार तक पहुंच मिलती है तो छोटे उद्यमों के लिए आगे बढ़ने के रास्ते अधिक मजबूत हो सकते हैं। इसी दिशा में राष्ट्रीय SC ST हब भारत के MSME क्षेत्र को अधिक समावेशी और प्रतिस्पर्धी बनाने का प्रयास कर रहा है। इसी के साथ आज का विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। आज के कार्यक्रम को तैयार किया है हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने, तकनीकी सहयोग दिया है अलका सिंह ने। नमस्कार।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ हम मार्केट मंत्रा कार्यक्रम लेकर फिर से हाजिर हैं। आज की खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं आर्थिक विश्लेषक उदयन रे। उदयन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में अर्जुन।
0: Benchmark domestic indices rebound. Sensex jumps over 1%. Nifty settles above 22,500 mark. Asian stock markets end mixed and global crude oil prices decline.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज तेजी का रुख। सेंसेक्स में 1% से अधिक का उछाल और निफ्टी 22,500 अंक से ऊपर बंद हुआ। एशियाई शेयर बाजारों में मिला जुला रुख और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट।

0: And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज जोरदार तेजी देखी गई। इसके साथ ही बाजार में लगातार दो कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 879 अंक यानी 1.23% की बढ़त के साथ 72,472 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 289 अंक यानी 1.3% चढ़कर 22,520 पर पहुंच गया। विस्तृत बाजार में भी आज तेजी का रुख देखने को मिला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप सूचकांक करीब 1.7% उछला जबकि स्मॉल कैप में 0.5% से अधिक की बढ़त दर्ज हुई।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस रीबाउंडेड टुडे स्नैपिंग अ टू डे लूजिंग स्ट्रीक। सेंसेक्स एडवांस 879 पॉइंट्स 1.23% टू क्लोज एट 72,472। निफ्टी गेन 289 पॉइंट्स 1.3% टू सेटल एट 22,520। In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index rose nearly 1.7% and the small-cap 100 index added over 0.5%.
1: सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 29 के शेयरों में तेजी रही। बढ़त दर्ज करने वाली प्रमुख कंपनियों में आईटीसी के शेयर 4.8% चढ़े, टीसीएस में 4.2% से अधिक की तेजी आई जबकि अडानी पोर्ट्स के शेयर 3.4% मजबूत हुए। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज एकमात्र ऐसी कंपनी रही जिसके शेयरों में 0.6% की गिरावट देखी गई।
0: All 28 sectoral indices on the Bombay Stock Exchange edged upward. Among the top gainers, focused IT climbed nearly 3%, IT jumped 2.9% and hospitals gained 2.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive as shares of 2,516 companies advanced, 1,867 companies declined and 227 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले आज 5 पैसे की मजबूती के साथ 96.74 रुपए पर बंद हुआ। उद्यन एक बार कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: एक बड़ा सवाल यह है कि 8 सप्ताह में लगातार बाजार गिरावट के साथ बंद होता रहा। आज हमने देखा कि 8 सप्ताह के बाद बाजार तेजी के साथ बंद हुआ और ये भी हम देख रहे हैं कि बिकवाली अभी रुक नहीं रही।
2: हाँ देखिए, जैसे होता है कि बारिशों के मौसम में काफ़ी दिन जब बारिश होती है और एक दिन धूप खिल निकल आती खिलती हुई तो वेलकम तो लगता है, वो उसका सभी स्वागत करेंगे। पर ये बताने लायक बात ये है कि ये जैसे कि पूरा जो मार्केट का मूड और मूवमेंट रहा है वो कच्चे तेल के दाम और खाड़ी में जो संघर्ष चल रहा है उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब क्योंकि कल अमरीकी राष्ट्रपति ने कुछ ऐसे वक्तव्य दिए जिससे लगा कि अगले कुछ हफ्तों तक वहाँ पे जो चुनाव होने वाले हैं मिड टर्म्स, तो वहाँ तब तक शायद संघर्ष ना हो, कोई ताज़ा संघर्ष ना हो, तो उससे थोड़ा सा एक रिलीफ मिला है। और दूसरा, आईटी सेक्टर में एक प्रमुख कंपनी के नतीजों का जब आकलन किया गया है तो उसमें उम्मीद जगी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वहाँ पे ये पाया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से जुड़े हुए जो उनकी गतिविधियाँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पे एक बहुत हेल्दी डेवलपमेंट देखा गया, ग्रोथ देखा गया। तो एक कुछ बातें जो कई बार क्या होता है, आपको एक प्लेजेंट सरप्राइज कहीं और से आ जाता है
1: जी।
2: तो बोथ रिजल्ट्स के जरिए से और दूसरा जो वैश्विक एक परिस्थिति है उन दोनों के चलते वो एक हेल्प हुआ। दूसरे जो मार्केट वॉचर्स हैं वो आपको और भी पॉइंट्स बताएंगे, पर मेरे हिसाब से ये दो सबसे प्रमुख कारण हैं।
0: We saw aggressive buying by the DIIs to the tune of 4,723 crore rupees in the markets today as net buyers. IT

0: ऐसा एक माहौल बना रहा। तो आज जब हाई टाइड आया तो सब सारे बोट्स उठ गए। तो पर वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आ रही हैं, इन्वेस्टिंग स्टोरीज आ रही हैं, जिसके वजह से भी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब भेड़ चाल में सब कुछ चल रहा है, वहाँ पे काम अच्छा हो रहा है। पर स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में अगर कुछ सुपरस्टार बन जाते हैं तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो साइड में रह जाते हैं। तो वो दोनों टाइप के रिस्क होते हैं। तो वो आप अगर किसी के थ्रू जा रहे हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स या एनपीएस या किसी और के थ्रू से आपका निवेश हो रहा है, स्लाइटली बेटर होता है क्योंकि वहाँ पे आपको एक्सपर्टीज का फायदा मिलता है।
1: तो क्या ये समय है लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि जिस तरह के मार्केट के हालात हम देख रहे हैं चारों तरफ जैसी स्थितियाँ बनी हुई हैं?
0: देखिए अगर लंबी अवधि के लिए आप निवेश कर रहे हैं तो एक तो ये है कि आप लार्ज कैप देखें, मिड कैप देखें, फिर मल्टी कैप, उस टाइप की बातें करें, मतलब या तो सीधे स्टॉक या फंड्स हैं। दूसरा है कि बिल्कुल आप इस पर सर खपाना नहीं चाहते हैं तो सीधे इंडेक्स फंड या ETF में डालें, और वाइड इंडेक्स होना चाहिए, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 500 में देखिए। और इंडेक्स फंड्स तो अब और पॉपुलर होते चले जा रहे हैं, उसमें आप ये सोचिए कि भारतीय इक्विटी जो शेयर बाजार का एक रिप्रेजेंटेटिव है, उसको एक स्टॉक की तरह समझिए, और एक मतलब एक यूनिट को, और कहिए कि ये भारत के शेयर बाजार को रिप्रेजेंट करता है और मैं इस यहाँ पे निवेश करना चाहता हूँ। भारतीय जो कंपनियाँ हैं, कम से कम हमारी जो GDP की ग्रोथ है प्लस इन्फ्लेशन जो है, उतना रिटर्न तो देगी, एक अच्छी कंपनी तो उतना देती ही है। और ये अगर मान के आप अगर चलते हैं कि आपको लगता है, गारंटी की कोई किसी बात की होती नहीं है, पर लंबी अवधि में ये पाया गया है इतना तो हो ही जाता है। तो अगर आप इंडेक्स को एक स्टॉक की तरह माने, एक यूनिट को, म्यूचुअल फंड यूनिट, इंडेक्स फंड या ETF, जो कि निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 या 100 या 500 जो भी करते हैं, थोड़ा सा बड़ा ब्रॉड बेस, तो वो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तब आपको ये सब स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिक्स कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, उसके बारे में, या अलग अलग जोड़ तोड़ करके देखिए। एक तो होता है कि जो फॉर अ लिविंग जो ये निवेश करते हैं, एक लो रोज़मर्रा की ज़िंदगी लोग जी रहे हैं, उनको काम भी करना है, उनको परिवार के साथ समय भी बिताना है, तो उनके लिए ये वाला रूट शायद बेहतर है। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी।
2: Very briefly, apart from IT, FMCG also did very well today. The index went up by 966 points. Again, quarterly results are expected to be good.
0: I would say there might just be a mixed bag. It may not be a wide-ranging thing, but I think what people would be looking at, how these guys are looking at the festive season. So all eyes would be on the festive season.
1: एशियाई बाजारों में आज सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% गिर गया। जापान का निक्केई 225 मामूली रूप से नीचे है, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग 1.8% चढ़ा और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं दक्षिण कोरिया का कोस्पी अवकाश के कारण बंद रहा। यूरोपीय बाजारों की बात करें तो अंतिम समाचार मिलने तक जर्मनी का डेक्स 1.3% चढ़ा, जबकि लंदन का फुटसे 100 1.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। आज एशियाई बाजारों में भी एक तरह से ऐसा रुख हमें देखने को नहीं मिला जिससे ये पता चले कि जो पॉजिटिव खबरें आ रही थी अलग अलग देशों से, खासतौर पर US की बात करते हैं, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला हो।
0: वो मुझे लगता है कि ऐसे अभी तो मैंने डिटेल में देखा नहीं है, मुझे लगता है वो वहाँ पे इंडिविजुअल केसेस में बातें रही होंगी, पर ये जो इफेक्ट है आज भी, अगर आज उसको पूरी कंटिन्यूटी में आज अगर देखेंगे, मुझे लगता है शायद थोड़े से बेहतर पूरा जब हो जाएगा, थोड़ा सा स्लाइटली लॉन्गर पीरियड में लेंगे, एक दिन और ले लेंगे, शायद आपको वही ट्रेंड आपको वहाँ पे भी रुझान वहाँ दिखे।
2: Moving on to the US stock market, major US stock market indices ended on a mixed note yesterday. The Nasdaq composite declined nearly 1.3% and the S&P 500 fell 0.5%, followed by a sell-off in chip as well as AI-related stocks. However, the Dow Jones Industrial Average eked out a marginal gain. Even though we are seeing profit booking in the US stock market, especially when it comes to AI stocks and companies that manufacture semiconductors. We saw that the dollar index has now creeped up to almost 102, 103 in fact. It's 102.276. The valuation of the dollar is going up. What are the reasons behind it? Because at the exchange rate is very favorable for companies who are export based. We saw IT companies do very well. The sector went up by 3%.

0: So what's happening with the US dollar?
1: So, Arjun, a dollar is seen as a secure haven or a safe haven within quotes.
0: It's a reserve currency.
1: Yeah, it is a reserve currency. So when things are a little risky or quite risky, you tend to move towards dollar. If you have a problem with the dollar, then you go to gold. So you move between dollar and gold during rainy days, shall I say. Now, what's happening is dollars... the kind of borrowing that the U.S. Government has is doing, its debt is already, I think, across 40 trillion, and 1 trillion, I believe, is just interest payments only. So with that, what's happening is the yields of government securities has gone up. That is making it very, very attractive at something like 5.3 or 5.4. Maybe it's gone up even more. That is a very good figure. So that's what's making people go and buy these securities. And as a result, you will find that all the things that you mentioned are happening in terms of a cascading effect. And this will probably go on till you keep getting those headlines. So that's the other thing. And one quick word is some of the things that you saw you spoke about in terms of stock market, it was a prominent AI company which missed its earning projections, that probably led to a reset in the thinking, you know, because when a prominent company misses its estimates and or projection, you start thinking whether it is a precursor or a trend, which is a part of it's going to be a larger trend that's going to happen.
2: इसमें लगता है आपको कि जिस तरह से माहौल बन रहा है यूएस की तरफ से आगे इसे सस्टेन करना चाहेंगे या फिर कुछ और भी लगता है आपको चेंजेस आएंगे
1: सस्टेन एज इन किस
2: सस्टेन मतलब कहने का जो भी बयान दे रहे हैं उनसे मार्केट पे असर तो पड़ता ही है
1: जी जी
2: उसकी बात कर रहा हूं
1: वो उसकी सप्लाई उसकी आपूर्ति होती रहेगी क्योंकि वो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने बयान देते रहेंगे एक शुक्रवार को एक सोमवार सुबह हो गया संडे को कुछ अनाउंसमेंट कर दी तो मार्केट को वो एक पैटर्न है जो कि सबने अब समझ लिया है तो वो होता चला जाएगा और उससे अब क्योंकि अब पैटर्न बन गया है मार्केट और स्मार्ट हो गई है और लोग निवेश भी उस हिसाब से कर रहे हैं तो एक बार आपको पैटर्न दिख जाता है तो इन्वेस्टर्स उसकी इर्द गिर्द कैपिटल
2: समझने की जरूरत है
1: एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो वो एग्जैक्टली वही हो रहा है
2: जी आगे बढ़ते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने कहा है कि मौजूदा अलनीनो की स्थिति और तीव्र होने की संभावना है संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की भी संभावना है इससे कई इलाकों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा 2026 में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचेगा इस घटना से मौसम का पैटर्न प्रभावित होगा और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पारिस्थितिक तंत्रों पर इसका असर पड़ेगा संगठन की महासचिव सेलेस्टे साउलो ने कहा है कि अल नीनो की स्थिति तेजी से मजबूत हो रही है और इसके फरवरी 2027 तक बने रहने की लगभग 100% संभावनाएं और अब अगर भारत की बात करें तो RBI के गवर्नर के हवाले से ये बात कही जा रही है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सप्लाई चेन में बाधाओं का असर घरेलू आर्थिक गतिविधियों पर पड़ सकता है वहीं कमजोर दक्षिण पश्चिम मानसून और अल नीनो की स्थिति से आगामी रबी सीजन और ग्रामीण मांग प्रभावित हो सकती है हालांकि गैर कृषि गतिविधियों के मजबूत बने रहने से ग्रामीण खपत को सहयोग मिलने की भी उम्मीद है वहीं महंगाई के मोर्चे पर भी चुनौतियां बनी हुई हैं कमजोर मानसून अल नीनो और अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों से जो उतार चढ़ाव पर महंगाई पर जो दबाव बन रहा है वो आगे भी जारी रह सकता है खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी कोर महंगाई में बढ़ोतरी और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की अधिकतर श्रेणियों में महंगाई का बढ़ना इस दबाव के व्यापक होने का संकेत दे रहा है उद्यम जिस तरह से RBI के गवर्नर ने ये तमाम चीजें कही हैं क्या स्थिति नजर आती है खासतौर पर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो हमारी अपनी नीड्स हैं उनको लेकर क्या
1: देखिए खाद्य पदार्थ फूड की जो मुद्रास्फीति है वो हमेशा एक एल नीनो के वेदर सिस्टम से उसके ऊपर असर पड़ता है हमारे देश में फिर भी हम खाद्य भंडार रखते हैं कई जो क्रॉप्स हैं उसमें हम वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर
2: रबी के लिए चिंता जताई गई
1: जी बिल्कुल है और अगर आपने कमेंट्री देखी होगी इंटरेस्ट रेट से जुड़ी हुई, इसी लोगों का मानना है।

0: है कि एक और इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी, एक और राउंड शायद साल के अंत में या अगले साल के बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत में एक और होगा। उसके बाद अगर जो खाड़ी क्षेत्र में जो संघर्ष है वो अगर बढ़ना जाए तो फिर उसके बाद एक ईजिंग होगी, नहीं तो अभी लोगों का मानना है क्योंकि ये इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं, कुछ और भी घटनाक्रम में उम्मीद की जा रही है, तो उनको मानना है कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, मुद्रास्फीति के जो दबाव हैं वो बरकरार रहेगी, और उसको काउंटर करने के लिए RBI को शायद एक और रेट हाइक, रेट इन ब्याज दरों में बढ़ोतरी की एक और राउंड की जरूरत पड़ेगी।
1: IMD ने भी आंकड़े जारी किए हैं, उनके अनुसार ये कहा गया कि जुलाई से सितंबर के बीच में हमारा जो रेनफॉल है वो वर्ष 2001 के बाद से अपने मतलब सबसे न्यूनतम स्तर पर आ गया, इसका भी काफ़ी असर पड़ रहा है।
0: बिल्कुल, ये और ये सबसे पहले जब भी वेदर सिस्टम्स में प्रॉब्लम होती हैं, इस टाइप के सिचुएशन आती हैं, परिस्थितियाँ होती हैं, तो सबसे बड़ी चिंता होती है कि हमारी कृषि के ऊपर क्या असर पड़ेगा, खाद्य पदार्थ और खाद्य पदार्थ से जुड़े हुए जो दाम हैं उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, और उस हिसाब से सरकार को अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्शंस हैं वो प्लान करने पड़ते हैं
2: जी। In more news, GST Council yesterday announced a host of reforms aimed at improving compliance in the GST regime. Talking to Akashvani, Jyoti Vij, Director General of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, said GST Council's reforms announcement will facilitate the ease of doing business.
3: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डीक्रिमिनलाइजेशन की तरफ काफी इसमें पॉजिटिव मेजर्स लिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन में हमारे इंडस्ट्री की एक मांग थी कि ई कॉमर्स कंपनीज की जब स्टेट लेवल पे रजिस्ट्रेशन होती है तो वो स्टेट लेवल के एड्रेसेस मांगते हैं, ई कॉमर्स के हर जगह में अपने ऑफिसेज नहीं होते, तो हमारा रिकमेंडेशन था कि वेयर हाउसेज को लिया जाए, वो रिकमेंडेशन जो है वो मान लिया गया है। नोटिसेस जो जाएंगे वो एक थ्रेशोल्ड कर दी गई है 10,000 की, तो 90% वो उसी में कैप्चर हो जाते हैं, इसमें काफी नोटिसेस कम हो जाएंगे, ये काफी परेशानी थी इंडस्ट्री की। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इजी कंप्लायंसेस, डीक्रिमिनलाइजेशन, इन सब से इंडस्ट्री का फायदा होगा।
2: स्पीकिंग टू आकाशवाणी, डॉक्टर रंजीत मेहता, CEO एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ द PSG चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वेलकम द GST काउंसिल रिकमेंडेशंस।
4: The recommendation of the 57th GST Council meeting represent a significant step towards making India taxation system simpler, more transparent and business friendly. The recommendation to remove arrest provision under GST, increase the prosecution threshold from 1 crore to 5 crore, sends a strong message that genuine business should be encouraged, not burdened by excessive procedural complexities.
2: Will you brief comments on this? Because GST collection for the month of September was 2.04 lakh crore rupees. But again, those who are collecting don't want to be on the wrong side of the law. It's been decriminalized. The ease of doing business has gone up. How do you see the new reforms?
0: I think it can be quickly, split into a couple of parts. One is the, Arjun, when you get into GST payments, your money gets stuck. So a lot of these provisions that they're talking about, it frees up the money. You can claim credit or money that's getting stuck, that's getting opened up. So for small business, that's a big deal. Second is compliance. Compliance is a big deal. You know, it takes up a lot of time. Are you going to do business or are you going to comply with GST? So you're making it easier. All these multiple registrations, things related to exports, e-commerce, as your soundbite mentioned, these are administrative things which were kind of anachronistic and troublesome. Adhering to them was a challenge. So that has been taken care of. So I would say these two, in terms of compliance, in terms of cumbersomeness, they have been fixed.
2: In more news, India Today stressed that the steps announced by the US regarding Permanent Labor Certification Program, PERM, do not advance the shared ambitions of both countries. Addressing the media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal emphasized that talent mobility adds value to both economies of India and the US. He also highlighted that while it creates opportunities for Indians, it equally benefits US companies by providing access to cutting-edge talent, innovation research, productivity, competitiveness and job creation. The spokesperson further stated that besides creating shareholder wealth in the US, this is an area of tremendous mutual benefit for the two countries.
5: We are aware of the US Department of Labor's decision concerning the permanent

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशन पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये पाबंदी अगले आदेश तक लागू रहेगी। वहीं रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4

0: बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद न करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि स्टारलिंक जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और यूटेलसेट वन वेब सहित 3 कंपनियों को सैटेलाइट संचार लाइसेंस दिए गए हैं। नई दिल्ली में श्री सिंधिया ने कहा कि सरकार राजस्व साझाकरण के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीट पर जीत हासिल कर ली है। तमिलनाडु की दारापुरम में TVK ने जीत हासिल की, जबकि मधुरांतकम सीट पर TVK आगे चल रही है। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया NR कांग्रेस ने जीत हासिल की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और इथियोपिया की रणनीतिक साझेदारी साझा मूल्यों, समान आकांक्षाओं और विकासशील देशों के बीच ऐतिहासिक एकजुटता पर आधारित है। डॉक्टर जयशंकर ने आज अदीस अबाबा में इथियोपिया के विदेश मंत्री घिदियोन तिमोथिओस हेसेबोन के साथ अदीस अबाबा में बैठक की। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान व्यापार, निवेश, विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत के साथ खेलते हुए टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेनु कटारिया। Delhi police has denied permission for the proposed protest by the CJP at Jantar Mantar tomorrow. Addressing the media in New Delhi this morning, Delhi Police Joint Commissioner Nupur Prasad said that applications seeking permission to hold protest or other programs at Jantar Mantar must be submitted at least 10 days in advance. Ms. Prasad noted that the CJP had previously been granted permission to hold a protest at the venue but failed to comply with the prescribed guidelines and the undertakings given by the party. The Joint Commissioner said the decision to deny permission was taken in view of the prevailing law and order situation, public safety and traffic regulations in the New Delhi area.
2: We have received an application from Sarav Das, co-convener of Cockroach Janata Party. The application is regarding an intimation for protest of on 10th of October at Jantar Mantar. The protest was regarding accountability of CEC. This intimation was considered and it was found that the intimation was given in a very short span of time, whereas as per the prescribed

ஆகன விபின தகன பரிபாலயமா தாம விராஜித தாருண தனுபவன விபின தகன.

0: சில நொடிகளில் தொடரும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்மணி சமாச்சார் கே சாத் மே பிரியங்கா அருணா. दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये पाबंदी अगले आदेश तक लागू रहेगी। वहीं रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि स्टारलिंक, जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और यूटेलसैट वनवेब सहित 3 कंपनियों को सैटेलाइट संचार लाइसेंस दिए गए हैं। नई दिल्ली में श्री सिंधिया ने कहा कि सरकार राजस्व साझाकरण के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। 3 राज्यों के 5 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों में

भारतीय जनता पार्टी और तमिलग वेत्री कड़गम ने दो दो तथा ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने एक सीट जीती है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम में जीत हासिल की। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलग वेत्री कड़गम टीवीके ने दारापुरम और मंदुरांतकम में जीत दर्ज की। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने 1.5 लाख मतों की निर्णायक बढ़त बना ली है। भारत ने कहा है कि स्थायी श्रम प्रमाणन PERM कार्यक्रम के संबंध में अमेरिका के फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रतिभाओं का आवागमन भारत और अमेरिका दोनों की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय पेशेवरों को अवसर मिलते ही हैं, साथ ही अमेरिकी कंपनियों को भी अत्याधुनिक प्रतिभा, नवाचार, अनुसंधान, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार सृजन के माध्यम से समान रूप से लाभ मिलता है। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। रांची में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12 ओवर में 2 विकेट पर 142 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: that the U.S. government's suspension of certain companies from the PERM program does not by itself affect the validity of the existing H-1B visas or the status of visa holders and their dependents. He said that the move could have some impact on the permanent residency or green card process for eligible employees of the affected companies. The BJP has registered massive victories in both assembly constituencies of West Bengal Nandigram in East Midnapore district and Reji Nagar in Murshidabad district, where by-elections were held. In Nandigram, BJP candidate Hasirani Rath defeated her nearest rival, Congress candidate Milan Pradhan. In Tamil Nadu, the ruling Tamira Vetri Karagam TVK has won the assembly by-polls for Madurantakam and Tharapuram seats today. Counting of votes for the Thattanchavadi assembly constituency by-election in Puducherry has been completed. All India NR Congress candidate Ashok Anand has secured a comfortable victory in the seat vacated by Puducherry Chief Minister N. Rangasamy. Defence Minister Rajnath Singh today stated that the definition of national security has changed in today's era. He said national security is not determined solely by the size of the armed forces, but also determined by self-reliance in the defence sector. The Defence Minister was speaking at the Society of Indian Defence Manufacturers Champions Award ceremony in Delhi. And in cricket, India were 151 for 2 in 12.3 overs against West Indies in the second of the five-match T20 International Series in Ranchi when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: நேரம் இரவு 8:10.
2: ये आकाशवाणी है विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 23वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार. इसमें भाग ले रही हैं भारत सरकार के पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और राजनीतिक विश्लेषक रवि पराशर. कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव.
3: कल्पना कीजिए, हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच चिनाब नदी के उफनते पानी से 359 मीटर ऊपर टिकी एक विशाल फौलादी मेहराब का, जहाँ कभी पहुँचना महज एक सपना था, वहाँ आज भारत की तरक्की की ट्रेन फर्राटा भर रही है. सोचिए पंबन के नीले समुद्र पर खड़े उस पुल के बारे में, जो जहाजों को रास्ता देने के लिए समुद्र के सीने पर किसी विशाल पंख की तरह हवा में ऊपर उठ जाता है, या कच्छ के रण से लेकर कन्याकुमारी तक फैले उन चमचमाते एक्सप्रेस वे का, जिन्होंने दूरियों को सिर्फ किलोमीटरों में नहीं वक्त के पैमाने में भी आधा कर दिया है. ये केवल कंक्रीट, क्रेन और स्टील की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस अदम्य इच्छा शक्ति की जिसने चुनौतियों को संभावनाओं में बदला, जिसने भारत के भूगोल को एक नए भारत के भविष्य से जोड़ दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों पर आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आज हम रुख कर रहे हैं एक ऐसी ही बदलाव की कहानी की ओर. प्रस्तुत है विशेष अंक बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार.
4: ये फ्रेट कॉरिडोर मालगाड़ियों के लिए बिछाई गई स्पेशल पटरियां है. इससे उत्तर भारत की बंगाल और गुजरात के समंदर से कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है, और दादरी वो स्थान है जहां ये दोनों कॉरिडोर्स आपस में मिलते हैं. यानी यहां किसान जो उगाते हैं, यहां उद्योग जो कुछ बनाते हैं, वो जमीन से, हवाई मार्ग से दुनिया के कोने कोने तक तेजी से जा पाएगा.
3: श्रोताओं, जब किसी राष्ट्र के महान बनने की गाथा लिखी जाती है तो उसकी न्यू में उसकी रीढ़ यानी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है. पिछले वर्षों में भारत ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में जो गति, पैमाना और इंजीनियरिंग का चमत्कार देखा है, उसने न केवल देश की कनेक्टिविटी बदली है बल्कि हर नागरिक की आकांक्षाओं को नए पंख दिए हैं. इसी अभूतपूर्व कायाकल्प और इसके दूरगामी प्रभावों को समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर नीति को दिशा देने वाले पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी और इस पूरे विजन के सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत प्रभावों के विश्लेषक, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार रवि पराशर जी. आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है.
5: धन्यवाद.
6: धन्यवाद. धन्यवाद आनंद जी.
3: मिश्रा जी, आपके साथ शुरू करते हैं. और पिछले करीब एक दशक में भारत ने सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स, हर क्षेत्र में बड़े स्तर पर बदलाव देखा है. आपसे समझना

0: आते हैं कि क्या ये बदलाव सिर्फ इतना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का स्केल बढ़ा है या प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का तरीका भी बदला है, खासकर पीएम गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के जरिए। क्या अब इन अलग अलग प्रोजेक्ट्स को एक दूसरे से जोड़कर एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क की तरह देखने की सोच बन रही है?
1: बिल्कुल आनंद जी, आपने सही कहा कि पहले हमारे लिए रोड रोड थी, रेल रेल थी, या हवाई अड्डे थे जहाँ पे कुछ पैसेंजर जाते थे, कुछ गाड़ियां चलती थी, कहीं पे अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध थी। लेकिन पिछले 10-12 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक नई सोच, जो शहरों को जोड़ करके, स्थानों को जोड़ करके, लोगों की मोबिलिटी को करके, फ्रीट के मूवमेंट को, अनेकल मूवमेंट ही नहीं बल्कि उसको कितने सस्ते अफोर्डेबल तरीके से उसको कर सकते हैं, कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं, तो ये एक ऐसा नया व्यवस्था बनाया है पिछले 10-12 सालों में कि पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हमारी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो सारी की सारी बुनियादी सुविधाएं एक नए स्वरूप ले रही हैं। और वो स्वरूप है हमारा विकसित भारत, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 आजादी का, 100वीं सदी मना रहे होंगे, 100वीं वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हमारा देश जो विकसित होगा उसके लिए पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया। आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, एयरपोर्ट में ले लीजिए, जिस प्रकार से एयरपोर्ट की संख्या आज दूने से ज्यादा हो गई है, और केवल एयरपोर्ट की संख्या नहीं बढ़ी है बल्कि एयरपोर्ट पे चलने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। एक साधारण सा आदमी जो कि कभी सोच नहीं सकता था, वो उड़ान इस योजना के तहत अब उसको कहीं से कहीं, देश में लगभग 95 ऐसे एयरपोर्ट है जहां पे उड़ान योजना के अंतर्गत वो जल के जा सकता है। तो उसको एक नई चीज, आप कभी एयरपोर्ट पे जाइए तो देखिए, देख करके लगता है कि ये क्या है, ये नया भारत है। आप रेलवे को देख लीजिए, रेलवे में जिस प्रकार से न केवल हमारे जितने डबल ट्रैक उसको बनाया गया बल्कि लगभग 99% से ज्यादा, ऑलमोस्ट लाइक 100% ये सारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, और उसमें स्पीड पे ध्यान दिया गया। आज काफी करीब 80% ट्रैक हमारे ऐसे जिसके ऊपर 110 किलोमीटर की रफ्तार से रेल चल सकती है, तो स्पीड पे ध्यान दिया गया, सुरक्षा पे ध्यान दिया गया, पीपल्स कन्वीनियंस जो हम कभी सोचते नहीं थे, चाहे शौचालय से लेकर के आपको पावर पॉइंट प्लग जिससे कि आप अपना मोबाइल को चार्ज कर सके, आपके जो है खाने पीने की सुविधा हो सके, सारी की सारी हर तरह से, और स्पीड तो है ही, अफोर्डेबिलिटी, जैसे एक आनंद हमारी जो अमृत भारत ट्रेनें चली अफोर्डेबिलिटी के ऊपर उस पर ध्यान दिया गया, तो वंदे भारत ट्रेनें चली जिसको स्पीड के ऊपर ध्यान दिया गया, एक अमूल चूल परिवर्तन पूरा का पूरा, या फ्रीट कॉरिडोर में ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर, वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर, तो मुझे लगता है कि पूरी सोच में बदलाव आया। आप मेट्रो का नेटवर्क का देख लीजिए, जो मेट्रो कभी थोड़े से शहरों में हुआ करता था, हम इस पर बाद में विस्तार में बात करेंगे, तो एक छोटे शहर में जो करके आज हमारे लगभग 30 शहरों में मेट्रो चल रही है और तमाम सारे शहरों में चल रही है। पहले बार हमारे देश में रैपिड रीजनल ट्रेन की जो शुरुआत हुई है, जो नमो भारत के नाम से जो पहली शुरुआत हुई, तो ये एक नई सोच है कि कैसे हम व्यक्तियों को, जो व्यक्तियों के जो हमारे काम करने के, चाहे कारखाने से लेकर के उत्पादन के केंद्रों से लेकर के व्यवसायिक केंद्रों से लेकर के विदेशों तक, क्योंकि आज हम अपने देश के लिए ही नहीं बना रहे हैं बल्कि हम दुनिया के लिए बना रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं, तो उसको कैसे हम जहाज लाने के माध्यम से उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ये एक नई आर्थिक सोच जो पिछले 10-12 साल में बढ़ी है, और मुझे लगता है कि ये विकसित भारत का बहुत बड़ा एक बुनियाद, उसको आगे रंग देने के लिए, उसको ताकत देने के लिए तैयार हुआ है।
0: रवि जी, अगर एक एक करके बिंदुओं पर आए और सबसे पहले शुरुआत सड़क से करते हैं, नेशनल हाईवे नेटवर्क जो 91,287 किलोमीटर था वो बढ़कर लगभग 1,46,572 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। फोर लेन हाईवेज की संख्या बढ़कर लगभग 45,000 किलोमीटर तक पहुंच गई है। आपसे ये समझना चाहते हैं कि 2014 के बाद से जो ये परिवर्तन हुआ है आम नागरिक के जीवन में, ये जो आंकड़े हैं बढ़े हुए, इनका वास्तविक मतलब क्या है और देश की प्रगति में इनके क्या मायने हैं?
2: आनंद जी, राष्ट्रीय राजमार्गों का जिस तरह से विकास हो रहा है, न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी, तो जाहिर है कि इससे आम आदमी के दैनिक रोजमर्रा के जनजीवन पर काफी सकारात्मक असर पड़ा है। दूरियां घटी हैं, कनेक्टिविटी बढ़ने से बहुत सारी चीजें हुई हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से फसल को अच्छी मंडियों तक लाना ले जाना, इलाज के लिए अच्छे अस्पतालों तक पहुंच बढ़ना, और बहुत सारे स्तरों पर अगर हम देखें तो जैसा आपने कहा कि देश में सड़कों का जाल एक तरह से बिछ रहा है, और जो आपने आंकड़ा बताया कि 2014 में जो भी प्रतिदिन सड़क निर्माण का आंकड़ा था वो अब बढ़कर 28 से 30 किलोमीटर रोज हो गया है, तो उल्लेखनीय वृद्धि है। 2014 में राष्ट्रीय राजमार्ग थे देश में, उनकी कुल लंबाई 91,287 किलोमीटर थी, अभी 2025-26 में ये आंकड़ा 1,46,572 किलोमीटर तक पहुंच गया है। ये करीब परसेंटेज में देखें तो ये 61% बढ़ोतरी है। ये

0: अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है किसी भी सरकार के लिए, गति शक्ति मास्टर प्लान
1: जी,
0: इसका उल्लेख करना हमें यहाँ पर बहुत आवश्यक है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पीएम गति शक्ति योजना में सड़क, रेल और दूसरे ट्रांसपोर्ट, जैसे दुर्गा शंकर जी ने कहा, साधनों को, सारे जो यातायात के साधन है उनको एकीकृत किया गया है और इसका बहुत बड़ा फायदा अलग अलग सेक्टर्स को बिल्कुल मिला है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात आई है, देश के चारों कोनों में हर जगह एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, उनसे दूरियां बहुत घट गई हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है ये। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई 1350 किलोमीटर है और दिल्ली से मुंबई जाएं या मुंबई से दिल्ली के बीच हम एक्सप्रेसवे के जरिए सफर करें बाय रोड तो 24 घंटे की बजाय 12 घंटे में ये सफर संभव है। अब ये कितना बड़ा अंतर है, जो यात्रा आप 24 घंटे में कर पाते थे वो अब करीब करीब आधे समय में आप कर सकते हैं, तो न केवल समय की बचत है बल्कि ऊर्जा की भी बचत है। इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो इंजीनियरिंग के, भारतीय इंजीनियरिंग के जो अद्भुत चमत्कार हैं वो भी आप देखेंगे। इसी दौरान कुछ प्रोजेक्ट जो है संभव हुए, तमिलनाडु के मंडपम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला एक ब्रिज है जो अंग्रेजों के शासनकाल में 1914 में शुरू हुआ था उसका बनना, और करीब करीब इसकी लंबाई 2.2 किलोमीटर है। जंग लगने की वजह से और कुछ पुराना पड़ने की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। अब जो नया पंबन ब्रिज बना है वो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। अटल सेतु की बात कर ले, इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है और ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। दक्षिण मुंबई के सेवरी को नवी मुंबई से जोड़ता है ये। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है, जो समुद्र पर इसका हिस्सा बना है उसकी लंबाई 16.5 किलोमीटर है और जमीन पर इसकी लंबाई 5.5 किलोमीटर है। ये 6 लेन का अटल सेतु है। मुंबई से नवी मुंबई तक 20 मिनट में इसके जरिए जो यात्रा करते हैं इसके माध्यम से, उसमें केवल अब आजकल 20 मिनट लगते हैं, पहले घंटों लगते थे क्योंकि ट्रैफिक जैम बहुत लंबे लंबे लगते थे और इसकी लागत थी 17,840 करोड़ रुपए। इसी तरह सुदर्शन सेतु को ले, भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है ये। गुजरात के द्वारका जिले में अरब सागर पर ये सुदर्शन सेतु स्थित है। ओखा को बेठ द्वारका से ये जोड़ता है। इसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर है, लागत आई थी करीब 979 करोड़ रुपए। ये 4 लेन का पुल है और दोनों किनारों पर लोगों की सुविधा के लिए 2.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ है जिस पर वो चहलकदमी भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में सड़क कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी पर बहुत ध्यान दिया गया है और इसका लाभ बहुत सारे सेक्टरों को मिल रहा है।
1: मिश्रा जी, अगर सड़क से सफर को आगे बढ़ाएं और रेल की तरफ चलें, जैसा कि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जिक्र भी किया अमृत भारत स्टेशन का, तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1300 से अधिक रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास हो रहा है। साथ ही साथ नमो भारत और वंदे भारत जो ट्रेनें चली हैं उससे यात्रा समय में तकरीबन 30-40% की समय की कमी आई है, जो आप स्पीड की भी बात कर रहे थे। सवाल यह है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने और देश की जीडीपी में इस आधुनिक कनेक्टिविटी का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, इसको आप कैसे देखते हैं?
2: आनंद जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन मैं इसके पहले इसको बात करूं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा जो पराशर जी बोल रहे थे। देखिए, पहले दिल्ली से मैं रहने वाला हूं पूर्वांचल का। दिल्ली से अगर आपको बलिया या आजमगढ़ जाना हो तो बहुत टाइम लगता था, समझिए कि पूरा दिन भर आपको नहीं बल्कि ऑलमोस्ट 20-22 घंटे लग जाते थे। और आज आप दिल्ली से लेके लखनऊ तक एक्सप्रेसवे है जो कि मुश्किल से 5 घंटे में आप लखनऊ पहुंच सकते हैं और वहां से अगले 3-3.5 घंटे में 4 घंटे में आप हो जाते हैं। जो दूरी हम लगाते थे 20-20 घंटे लगा देते थे, वो हम 9 घंटे के भीतर भीतर वहां पहुंच जाते हैं। उसका क्या नतीजा निकला? आज जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था तो पहले पूर्वांचल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था क्योंकि वहां कोई सामान ले जाना अपने आप में बहुत दूर हुआ करता था। आज पूर्वांचल में तमाम सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, बुंदेलखंड में काफी सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को इस प्रकार से कनेक्टिविटी जोड़ा है हाईवे के, नेशनल हाईवे के माध्यम से, एक्सप्रेसवे के माध्यम से, या तमाम सारे इंजीनियरिंग मार्वल जिसका भी जिक्र कर रहे थे, जैसे अटल सेतु की बात कर रहे थे, अटल सेतु में उसको सेतु नहीं लेता हूं मैं, उसको समझता हूं कि दो इकोनॉमिक सेंटर, दो ग्रोथ सेंटर, एक तरफ तो मुंबई है, दूसरे नवी मुंबई, या आगे चलिए पूना का देख लीजिए, इन दोनों के बीच की दूरी को कम करके उसने एक बिल्कुल नया चीज ला दिया। मैंने आर्थिक विकास के लिए जो हम जब, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक हमारा ये पाई, इकोनॉमिक पाई बढ़ेगा नहीं, तब तक हमारे देश के लोगों की समृद्धि, लोगों के जीवन की जो स्तर में, उसमें सुधार नहीं हो। तो इसके लिए एक बहुत

0: का काम हमारा एक्सप्रेसवे, हाईवेज और इसके माध्यम से भारत सरकार कर रही है और भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से राज्य सरकार भी इसके ऊपर काफी सारा आज महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमाम सारे जगह इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। अब आपका जहां तक रेल का सवाल है, रेल में देखिए कि पिछले 10-12 साल में टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक उनका एक संदेश है कि पहले चीजों को स्केल अप करिए, पहले चीजों को नई टेक्नोलॉजी को लाइए, फिर स्पीड अप करिए और फिर स्केल, बड़े ऐसे स्केल जो कि संभव न हो, तो स्किल, स्पीड एंड देन स्केल। तो आज देखिए कि जिस प्रकार से रेलवे का ट्रैक हमारा लगभग 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया, रेलवे जो नए ट्रैक बने हैं, पिछले जो अगर हम देख रहे थे, जो एक मैं डाटा देख रहा था, जो पिछले 10 साल में बना थे उससे दूने से ज्यादा जो पिछले 10 साल में बना, यानी उस रफ्तार से बना। और उसमें रेल में वंदे भारत से जो चला, वंदे भारत से इतना सारा जो जुड़ रहा है, बहुत हाई स्पीड। और सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या है, ये हमारा आत्मनिर्भर भारत है। इसकी जो वंदे भारत की जो ट्रेन है, वो हम विदेशों से, पहले तो मिस्टर की चीजें विदेशों से लाते थे, कितना हमारा पैसा खर्च होता था, कितना हमारा फॉरेन एक्सचेंज लगता था, आज सब कुछ चीजें हमारे देश बन रही है। न केवल हमारे जो कोचेज बन रहे हैं, बल्कि हमारी पूरी टेक्नोलॉजी, चाहे कम्युनिकेशन सिस्टम हो या सारा का सारा चीज हमारे यहाँ पे बन रहा है। अब एक तरफ तो हमने स्पीड लाई, दूसरे तरफ हमारे देश में इतने सारे लोग हैं जगह जगह अपनी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए एक अफोर्डेबल ट्रेन, अफोर्डेबल, कंफर्टेबल, स्पीड भी और सारी फैसिलिटीज भी, सिक्योरिटी के लिए जो कवच ऑटोमेटिक सिस्टम, जो हमारा जो कवच का जो सिस्टम है, आज तेजी से कवच का पूरा प्रसार हो रहा है
1: जी।
0: अब ट्रेन का तो एक तो डिस्टेंस हो रहा है, अगर आप देखेंगे शहरों के भीतर एक जो नेटवर्क होता है मेट्रो का, अब मेट्रो नेटवर्क हम 2014 में तकरीबन 5 शहर में 250 किलोमीटर भी नहीं था, आज करीब 1150 किलोमीटर मेट्रो हमारे 26 शहरों में चल रहा है, और जो काम चल रहा अनदर 100,000 किलोमीटर पर काम चल रहा है, और लगभग हम पूरी तरह से इसमें आत्मनिर्भर हो चुके हैं। मैं तो उस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रहा हूँ, जिस प्रकार से आज हम मेट्रो कोचेज जो ले रहे हैं, सारे के सारे हिंदुस्तान में बन रहे हैं, हम विदेशों में अपने कोचेज, यहाँ के हिंदुस्तान के बने कोचेज विदेशों में। मुझे बड़ी खुशी होती थी कि जब कोई हमारे पास एक ट्वीट करता था, ब्रिस्बेन से ट्वीट कर रहा है, कोई जोहान्सबर्ग से कर रहा है, कोई कनाडा के शहर से कर रहा है, कि हम आज मेड इन इंडिया कोच में बैठे हुए, तो हम पूरी टेक्नोलॉजी को आत्मनिर्भर कर रहे हैं। और जो पहला जो हमारा एक, पहले तो हम ये मेट्रो को लेकर के इतने सारे शहरों के भीतर कनेक्टिविटी किए, अब शहरों से शहरों के बीच में
1: जी,
0: जैसे दिल्ली से मेरठ के बीच में जो हमारा नमो भारत, अब 82-83 किलोमीटर की दूरी करीब 15 स्टेशनों पर रुकते हुए आप केवल 55 मिनट में कर लेते, कहां 3 घंटे पहले लगते थे, 55 मिनट में कर सकते हैं, और इसे उसका क्या फायदा हुआ, आज उसके बीच तमाम सारे ग्रोथ सेंटर बनने चालू हो गए, तमाम सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी पूरा का पूरा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, वो सोच कनेक्टिविटी तो एक बेसिस है, लेकिन कनेक्टिविटी के आधार पर आर्थिक उन्नयन
1: जी,
0: कैसे लोगों की, हम अपने बिजनेस की, मैन्युफैक्चरिंग की, लोगों की अदर एक्टिविटी को बढ़ा करके कैसे लोगों का जीवन का स्तर को सुधार करें।
1: बिल्कुल ठीक बात है। रेल की चर्चा को थोड़ा रवि जी आपकी तरफ मोड़ते हैं, और दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज की बात करें, या देश के पहले केबल स्टेड अंजी खड ब्रिज, और भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट न्यू पंबन ब्रिज का निर्माण की बात करें, यह सिविल इंजीनियरिंग की उपलब्धि तो है ही, साथ ही यह सामरिक और भौगोलिक दुर्गमताओं पर भारत की तकनीकी विजय है। आपसे समझना चाहते हैं कि ऐसे कठिन प्रोजेक्ट्स में इंजीनियरिंग विल पार और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की गति को किस तरह साधा गया, और इसे देश में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिला।
2: देखिए आनंद जी, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी योजना परियोजना हो, इच्छा शक्ति अगर नहीं है तो वो पूरी नहीं हो सकती। अभी दुर्गा शंकर जी ने बताया कि दैनिक यात्रियों की रोजमर्रा की जीवन में मेट्रो रेल बहुत उपयोगी है, शहर टू शहर, छोटे शहर से छोटे शहर तक रैपिड रेल, यानी नमो भारत जो सेवा शुरू की गई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और देश के दुरूह और दुर्गम क्षेत्रों में भी रेलवे के इंजीनियरों ने बहुत कमाल दिखाए हैं। आपने चिनाब रेलवे ब्रिज का उल्लेख किया, पहले कितनी लंबी यात्रा होती होगी जब ये रेलवे ब्रिज नहीं रहा होगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बनाया गया है, ये इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। इसकी ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है, और ये एफिल टावर जो पेरिस में है उससे भी 35 मीटर ऊंचा है। इसकी लंबाई 1315 मीटर है, लागत इसमें आई 1486 करोड़ रुपए की, और इसकी मजबूती इतनी है कि ये 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आने वाली हवाओं और रिक्टर स्केल पर अगर कोई 8 की तीव्रता तक भूकंप आता है उसको भी ये सहज ही झेल सकता है। इसके अलावा आपने अंजी खड ब्रिज का उल्लेख किया, इसकी विशेषता ये है कि ये भी जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी

0: पर बना भारत का पहला केबल के सहारे लटका हुआ पुल है। कटरा और रियासी को ये पुल आपस में जोड़ता है। ये उधमपुर श्रीनगर बारापुला रेल लिंक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी लंबाई 725.5 मीटर है, ऊंचाई नदी तल से 331 मीटर है। इसमें 96 केबलों का इस्तेमाल किया गया है और मुख्य स्तंभ नींव से 193 मीटर ऊंचा है और इसकी क्षमता है कि 213 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली जो हवाएं हैं उनको ये झेल सकता है। वो इस रफ्तार से चलने वाली हवाएं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और इस पर रेलगाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर सकती हैं। एक और दक्षिण भारत के ऐसे ही अद्भुत पुल की बात कर लें, यह है पाम्बन ब्रिज जो तमिलनाडु में मंडपम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला है। मोदी सरकार के कार्यकाल में इसको नया स्वरूप दिया गया, नया बनाया गया। जो अब नया पुल बना है ये पाम्बन ब्रिज तमिलनाडु में, वो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। ये आधुनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ऑटोमेटेड सिस्टम पर काम करता है। डबल ट्रैक वाला ये ब्रिज, इस पर ट्रेनें 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुजर सकती हैं। जब आपने बताया, उल्लेख किया कि जब कोई जहाज निकलना होता है पुल के रास्ते से, तो ये अद्भुत तकनीकी क्षमता है इस पुल की कि 5 मिनट के अंदर पूरा पुल दो हिस्सों में विभाजित होकर ऊपर की ओर उठ जाता है। तो ऊंचे समुद्री जहाज हैं वो इसके रास्ते से निकल जाते हैं और फिर अगले 5 मिनट में इसको वापस पुल की शेप में लाया जा सकता है।
1: श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों पर आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में प्रस्तुत है विशेष अंक बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर नीति को दिशा देने वाले पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार रवि पाराशर जी। रेलवे के बाद अगर एयरपोर्ट की चर्चा करें मिश्रा जी, तो और हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि जो धौलेरा एक्सप्रेसवे बना या जो धौलेरा एयरपोर्ट बना, उसको भारत के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन के नजरिए से विकसित किया गया। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में जो कुछ समय पहले तक, अगर 2014 से पहले की बात करें, तो सरकारी लाल फीताशाही बहुत ज्यादा चरम पर थी, तो गवर्नेंस रिफॉर्म्स किस तरीके से किए गए कि ये बड़े प्रोजेक्ट सफल हुए? साथ ही साथ ये जो धौलेरा एयरपोर्ट या फिर एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ी, इससे भारत का वैश्विक स्तर पर कितना समृद्ध प्रभाव पड़ा? और जो हम निवेश की बात करते हैं कि विदेश से निवेश आए, उसमें एयरपोर्ट्स ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई?
2: बिल्कुल ठीक आपने कहा, धौलेरा एयरपोर्ट जो अभी बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है
1: जी।
2: धौलेरा एक ऐतिहासिक स्थान है, लोथल का आपने नाम सुना होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जो है जुड़ा हुआ वो स्थान है। मुझे वहां भी जाने का सौभाग्य मिला। वहां किसी समय इतना बड़ा सी पोर्ट हुआ करता था, इतनी सारी समृद्धि उस जमाने में, बहुत सारे बीट्स के काम दुनिया भर से वहाँ का संबंध हुआ करते थे। आज वहाँ पहुँचना भी बड़ा मुश्किल था। तो जैसे मैंने बताया कि एक तो वहाँ पे जाने के लिए अहमदाबाद से डायरेक्ट वहाँ के सड़क धौलेरा के लिए बन गई है,
1: धौलेरा एक्सप्रेस वे।
2: अभी हाल में जो कैबिनेट के डिसीजन के साथ एक अप्रूवल किया गया, एक वहाँ पे भी रेल लिंक, भी फास्ट रेल लिंक भी जो है अहमदाबाद से डायरेक्टली वहाँ धौलेरा से जोड़ने के लिए एक रेल लिंक भी सैंक्शन कर दी और वहां पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है। अब धौलेरा जो है एक बहुत बड़ा स्पेशल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट सेंटर, जहां पे आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आ रही है, तमाम सारे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को मतलब के जुड़ने का मतलब बहुत सारी किस्म की इंडस्ट्रीज वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है
1: जी।
2: आज एक वो नया स्वरूप लेकर के आगे बढ़ रहा है और ये केवल धौलेरा की कहानी नहीं है, बल्कि उसके जैसे आज देश में तमाम सारे जो नए नए एयरपोर्ट्स बने, जो 174 मैंने आपने बताया कि 64 से लेकर के 170-75-74 से बढ़ करके 160-170 के आसपास आज एयरपोर्ट बन गए हैं और सारे चालू हो गए हैं। उन एयरपोर्ट्स पे अब जैसे नवी मुंबई का एयरपोर्ट है
1: जी,
2: या गुवाहाटी का जो नया एयरपोर्ट बना है
1: जी,
2: जेवर का जो नया एयरपोर्ट बना है, आपका चित्तूर का वहां साउथ का जो एयरपोर्ट बना, जो गोवा में एक अल्टरनेटिव एयरपोर्ट बना, मोपा का जो एयरपोर्ट बना
1: जी,
2: कैंपागोड़ा, हाँ, मतलब इतने सारे देश में जो एयरपोर्ट्स बने, एयरपोर्ट से हमने दुनिया से कनेक्टिविटी, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हैं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी हैं, तो दुनिया से अपने आप को जोड़ा हमने, लॉजिस्टिक्स को बहुत सारा, इससे हमारा काफी सारा जो है इससे जो व्यापार होगा, व्यापार हमारे इसमें काम आएगा। और एक आम आदमी के लिए जिस प्रकार का जो एक एयर फेयर हो गया है, आम आदमी को भी, क्योंकि समय बचाना है उसको, उसके लिए भी उतना मत पड़े। तो वो जो आपने जो बात कही, एक हवाई चप्पल में चलने वाला आदमी हवाई सफर कर रहा है, एक देश का एक नई तस्वीर उभर करके सामने आई है।
1: रवि जी, अगर इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, बतौर पत्रकार आप कितना बड़ा बदलाव देखते हैं? 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स इस देश में हैं और हम उड़ान योजना

0: की बात कर रहे हैं और अब उड़ान 2.0 की भी बात हो रही है, जिसमें और सुविधाएं आम नागरिकों को मिले। हमने ये भी देखा कि सरकार ने एयरपोर्ट्स पर मिलने वाली सुविधाओं को भी आम नागरिक के ध्यान में रखकर बहुत बदलाव किए हैं, चाहे वो वहां पर फूड आइटम्स के प्राइस को कम करना हो या फिर पैसेंजर्स के लिए लाउंज की सुविधा उपलब्ध कराना हो। बतौर पत्रकार जमीनी स्तर पर कितना बदलाव देखते हैं आप?
1: आनंद जी, जमीनी स्तर पर एक पत्रकार के तौर पर जो मेरे अनुभव हैं, मेरा करियर 1988-89 में पत्रकार के तौर पर शुरू हुआ था और उस समय मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि जो मेरा वेतन था उससे मैं हवाई यात्रा कर सकूंगा। और आज इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है और जो मेरी स्थिति है, आज मैं जब चाहूं समय बचाने के लिए हवाई यात्रा मेरी सीमा में, मेरी जेब की सीमा में, तो ये फर्क बहुत धीरे धीरे आया है और पिछले 10-12 साल से बोहोत तेजी से हम देख रहे हैं। आपने बताया कि 2014 में हवाई अड्डे केवल 74 थे, अभी 165 हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए। पहले क्या होता था कि आप घर के पास हवाई यात्रा करने के लिए भी आपको सड़क से बहुत लंबी चौड़ी यात्राएं करनी पड़ती थी, जो स्थिति आज नहीं है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को किया गया, 15 जून 2026 से यहां से कमर्शियल उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। हिंडन एयरपोर्ट से छोटे छोटे शहरों की हवाई कनेक्टिविटी बनाई गई है। तो दिल्ली NCR के जो लोग हैं उनके लिए और दूर दराज विदेश से आने वाले और दूर दराज के क्षेत्रों से राजधानी NCR क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए हवाई यात्रा की कितनी सुगमता हो गई है, कितनी सुलभता हो गई है, ये आज देखने को हमें मिलता है। और हवाई अड्डों, जो पुराने हवाई अड्डे थे, इस सरकार ने केवल उनकी क्षमता ही नहीं बढ़ाई, उनकी साज सज्जा, उन पर जैसे आपने कहा कि खान पान की सुविधाएं, उनका जो लुक भारतीय विरासत और भारतीय संस्कारों से जीवंत रहे, ऐसे प्रयास भी किए। हवाई अड्डों की क्षमता बढ़ाने के लिए नए टर्मिनल भवन बनाए गए हैं। तो एक पत्रकार के तौर पर पिछले 12 साल के अनुभव मैं ये कह सकता हूं कि जो लोग पहले हवाई यात्रा की कल्पना नहीं कर सकते थे अपने बजट के हिसाब से, वो आज हवाई यात्रा की कल्पना, अगर उन्हें कहीं अपेक्षाकृत जल्दी पहुंचना है, तो कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। कार्यक्रम में अब चर्चा करते हैं सागरमाला की। श्रोताओं, सागरमाला के 5 प्रमुख पिलर्स हैं: पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, पोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट और कोस्टल शिपिंग। लेकिन मिश्रा जी, जो मेरा आपसे सवाल है वो वाटर मेट्रो को लेकर है। 2026 में, यानी इसी वर्ष, नेशनल वाटर मेट्रो पॉलिसी का ड्राफ्ट मसौदा पेश किया गया। सवाल ये है, और बहुत सारे श्रोता भी ये जानना चाहते हैं कि जो वाटर मेट्रो की पहल है, एक तो उससे भूमि अधिग्रहण की जो स्थिति है वो खत्म हो जाएगी, उसमें भी हम कई सारे पेंच देखते थे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना वाइबल है भारत जैसे देश में? क्या इसको एक शहर से दूसरे शहर तक जोड़ा जा सकता है? क्या है इसकी वर्तमान स्थिति और वास्तविक धरातल पर कब हम इसे देखने वाले?
2: बहुत अच्छी बात कही आप आनंद जी आपने। ऐसा है, जैसे मेट्रो आया, मेट्रो का क्या मकसद है कि शहर में आप हर किलोमीटर पे आपके स्टेशन हो, 800 मीटर से लेकर के 1000 बार, कि कहीं से कहीं पहुंचना तो आप जो है 10-12 मिनट में आप एक मेट्रो स्टेशन में पहुंच सकते हैं
0: जी।
2: उससे पूरा शहर, आज दिल्ली में 400 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो का नेटवर्क बना हुआ है, तो दिल्ली में कितना आसान हो गया, ट्रेवल कितना आसान हो गया है, और भी बढ़ रहा है। अभी नए उसका जो फेज 5 का, उसके मेट्रो का काम चल रहा है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे शहर हमारे देश में है जहाँ पे या तो समुद्र या वहाँ पे पानी का नेटवर्क बना हुआ है
0: जी।
2: अब वहाँ पे पहले क्या होता था कि पुराने जमाने वाली जो बड़ी बड़ी बोट चलती थी और वो आराम से 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की रफ्तार से चली करती थी, आपको घंटों लग जाता था, कोई सुविधा नहीं होती थी धूप में और उसमें आप परेशान होते थे
0: जी।
2: मेट्रो ने क्या लाया? मेट्रो आपको कम्फर्ट लाया, कनेक्टिविटी लाया, आपको जो पंक्चुअलिटी लाया
0: जी,
2: आपकी चीज़ों को आसान कर दिया, उसके पूरी तरह से जा सकते हैं। पहले जो इन शहरों में क्या होता था, कोची शहर में, क्योंकि मैं उस समय भारत सरकार का सेक्रेटरी था इसी मिनिस्ट्री का, और हमारी उसमें हम ये सब सारा का सारा चीज डेवलपमेंट हो रहा था, तो आप कोची में अगर आप देखें तो वहां पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दूरी तो मुश्किल से 2 किलोमीटर की होगी, 1.5 किलोमीटर की होगी, लेकिन आपको 2500-3000 किलोमीटर जाना पड़ता था उसका, समुद्र का जो अंदर गया उसे 30 किलोमीटर जाकर के आपको घंटों लग जाते थे
0: जी।
2: अगर इसको ऐसा आपको महसूस हो जाए कि जो वहाँ पे स्टेशन बना हुआ वो स्टेशन मेट्रो स्टेशन टाइप का, एयर कंडीशन है, बैठने के लिए अच्छी जगह है, सारी की सारी सुविधाएं हैं और आपको कंफर्ट है, अगर आप कुछ खाना पीना चाहे, कुछ खरीदना चाहे, सारी की सारी फैसिलिटीज है
0: जी।
2: ऐसा स्टेशन अगर आपको बन जाए तो आप कहीं से कहीं आप कनेक्ट कर सकते हैं
0: जी।
2: अब तो काफी कुछ चीजें हम आत्मनिर्भर भी हो चुके हैं। उस समय इस चीज को कोची में डेवलपमेंट शुरू किया गया और आज मुझे खुशी है कि वहां पे

0: 20 स्टेशन में इस प्रकार के कंफर्टेबल बोर्ड्स और रेलवे मतलब स्टेशन वगैरह तमाम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। अब ये एक हमारे लिए नया अवसर पैदा हो गया, और नया अवसर ये पैदा हो गया कि इसके हिसाब से अब आप हमारे देश में ऐसे बहुत सारे, क्योंकि हमारे देश में करीब 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है और उसमें कई सारे जगह पर इस प्रकार की चीजें हैं, तो अगर जहां पे है तो वहां पे ऐसे 18 शहर चुने गए हैं जहां पे इस प्रकार की वाटर मेट्रो की सुविधा हो सकती है। इसी में मैं आपको एक और चीज बताऊं कि केवल वाटर मेट्रो के अलावा अब एक नई चीज पहले बार देश में होने जा रहा है, उसमें अगेन मैं एज ए सचिव मुझे मौका मिला काम करने का। भारत में पहले बार हमको ट्रांसपोर्ट को एयर के माध्यम से यानी रोपवे, अभी तक हमारे देश में रोपवे का उपयोग होता था, वो कोई धार्मिक स्थान है वहां पे जाने के लिए लोगों को केवल टूरिस्ट पर्पज से, बकायदे आप अपना सामान लेकर के कहीं से कहीं आप जा सकते हैं। और बनारस में बहुत जल्दी मैं आशा करता हूं कि ये जो रोपवे जो बनेगा, ऐसे शहरों में बहुत कंजेशन आज लैटिन अमेरिका के कई सारे शहरों में, यूरोप के कई सारे शहरों में रोपवे का उपयोग करते हैं ट्रांसपोर्ट के तौर पर। ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने नया चीज, और पहले बार उनके ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहला हमारा देश का जो ट्रांसपोर्ट रोपवे, बहुत जल्दी मैं आशा करता हूं कि शुरू होने जा रहा है।
1: कार्यक्रम में समय कम है, एक एक सवाल आप दोनों से बहुत संक्षेप में। रवि जी आपसे समझना चाहेंगे कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो बॉर्डर एरियाज हैं हमारे, चाहे वो लद्दाख हो, अरुणाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो या उत्तर पूर्व के सीमावर्ती क्षेत्र हो, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 2014 के बाद हमने देखा है कि वहां भी बहुत तेजी से विकास हो रहा है, किस तरह देखते हैं इस बदलाव को?
2: आनंद जी देखिए, पिछली सरकारों की जो नीति थी उस नीति को बिल्कुल मोदी सरकार ने उलट दिया है। मुझे याद है कि 2013 में तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने पार्लियामेंट में बताया था कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास इसलिए नहीं करती है केंद्र सरकार कि कहीं जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करें और उसका फायदा हमारे दुश्मन न उठा लें, इसलिए जैसा है दूभर को दूभर बना रहने दीजिए। लेकिन 2014 में अगले साल मोदी सरकार केंद्र में बनते ही ये नीति बिल्कुल आमूल चूल बदल दी गई, और अब स्थिति ये है कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, वहां सुरंगों का विकास, अटल टनल और बहुत सारी सुरंगें बनाई जा रही हैं जो आपातकाल में बिगड़े हुए मौसम में सेना के आवागमन को बहुत सुगम बनाती हैं, बहुत सारे बंकर सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिकों को जो बसे हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे स्थानीय स्तर पर काम किए जा रहे हैं, सड़कें बहुत मजबूत और पक्की बनाई जा रही हैं, और इसके अलावा जो हमारे रोड कनेक्टिविटी की बात हम कर रहे थे, हम वहां भी देखते हैं कि उनको इतना मजबूत बनाया जा रहा है कि हमारे हवाई जो हमले करने में सक्षम जो विमान है, लड़ाकू विमान, उन पर टच लैंडिंग कर चुके हैं यानी उतर सकें अगर ऐसी स्थिति हो तो। तो सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के मामले में मोदी सरकार बहुत प्राथमिकता दे रही है और पिछली सरकारों के तमाम नीतियों के उलट ये काम अब वहां हो रहा है।
1: मिश्रा जी, कार्यक्रम के समापन में बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की गति है इस देश में, उससे विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में कितना हमें आसानी होने वाली है?
0: मैं इसके पहले एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, जो फ्रीट कॉरिडोर, क्योंकि हमने अभी तक मोबिलिटी जो है पैसेंजर मोबिलिटी की ज्यादा बात की, जो हमारा डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर ईस्टर्न और वेस्टर्न बनकर के लगभग तैयार हुआ, 2,800 किलोमीटर से ज्यादा है, इससे पूरा का पूरा एक हमारा फ्रीट ईस्ट से लेकर वेस्ट से लेकर के ये सारा इतना बड़ा ये फैसिलिटी बन गई है। और नया इसके बाद फिर से अभी सूरत से लेकर के दुला वो भी प्रारंभ किया, उसको शुरुआत का अनाउंस किया गया, तो देश में हमारा लॉजिस्टिक का मूवमेंट इतना आसान किया गया जिससे लॉजिस्टिक का कॉस्ट बहुत हमारा कम हो जाएगा। देखिए, कोई भी देश आगे बढ़ता है तब जबकि उसके लिए ऐसा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए जिससे लोगों का मूवमेंट आसान हो जाए, गुड्स का मूवमेंट आसान हो जाए, सारा का सारा प्रोसेसेस हमारे आसान हो जाए, और वो सब कुछ बनकर के तैयार है या तैयार होता हुआ दिख रहा है। देखिए, हम बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि 100% हम वहां पहुंच चुके, तैयार होता हुआ दिख रहा है, और ये सारा का सारा जो धरातल तैयार की जा रहा है कि ताकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 में भारत को विकसित बनाने का, वो हम विकसित होकर के रहेंगे। क्योंकि जब ये सब कुछ हो जाएगा तो एक तरफ हमारा मेक इन इंडिया हो रहा है, मेक फॉर द वर्ल्ड हो रहा है, एक तरफ हम जितनी सारी नई टेक्नोलॉजीज है, आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, सब में हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे ग्रीन एनर्जी हो, हर तरह की हर चीज में हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम सब चीजों को बिल्कुल आसान कर दे, मतलब ये लुब्रिकेशन कहेंगे कि इकोनॉमी को लुब्रिकेशन लुब्रिकेट कर रहा है। एक और भी बड़ा इसका इंपॉर्टेंट पहलू है, ये सारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर से इतना बड़े लेवल पे रोजगार क्रिएट हो रहा है
1: जी,
0: और उस रोजगार के क्रिएट होने से लोगों की इनकम बढ़ रही है
1: जी,
0: तो एक इनकम तो इकोनॉमी के ग्रोथ से हो रहा है।

0: फैसला इसके वजह से तमाम सार मारे जो नौजवान हैं, जो हमारे युवा ज्योति जो नए आजकल के बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं, उनके लिए इतना बड़ा रोजगार का साधन भी इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उनको नए साधन क्रिएट कर रहा है। ये हमारे देश की बदलती हुई तस्वीर है। तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आपका जन सेवा से देश सेवा की बात है, वो इस प्रकार की चीज करके आज देश को हमारे एक नए लेवल पे, एक नए भारत को, आत्मनिर्भर भारत, एक विकसित भारत की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: बिल्कुल, जब बुनियादी ढांचे के पहिए तेजी से घूमते हैं तो पूरे देश की प्रगति को नई रफ्तार मिलती है। आज भारत सिर्फ रास्ते नहीं बना रहा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के समृद्ध भविष्य की नींव रख रहा है। डॉक्टर मिश्रा, आपका, रवि पाराशर आपका आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद आनंद जी।
1: ये थी बुनियादी ढांचे की वो नई रफ्तार जो आज भारत के हर कोने को एक दूसरे से जोड़ रही है और देश को आत्मनिर्भरता के साथ साथ समृद्धि के मार्ग पर आगे भी बढ़ा रही है। जनसेवा से देश सेवा की इस विशेष श्रृंखला के आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 23वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार। इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार के पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और राजनीतिक विश्लेषक रवि पाराशर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: தொடரும் செய்தி தொகுப்புகள் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
5: நமஸ்கார், ஆகாஷ்மணி சே சமாச்சார் சந்தியா கே சாத் மே பிரியங்கா அரோடா. मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने भी तमिलनाडु में विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में एक सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा विजय रही। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नविपिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में 3 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तमिलगा वेत्री कड़गम ने 2-2 तथा ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल कर ली है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम में जीत हासिल की। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कड़गम TVK ने दारापुरम और मधुरांतकम में जीत हासिल की। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजय रही। असम के नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा NDA के सुशासन पर भरोसा है। श्री मोदी ने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने पुदुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए NDA की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जीत लोगों की भलाई और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करने में पार्टी को और मजबूती देगी। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
6: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइन

0: है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं दिल्ली में सराय काली खां और न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन आज रात 9 बजे से कल रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान दिल्ली के आनंद विहार से उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं तय समय पर सुचारू रूप से चलेंगी। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। शंकर रोड वंदे मातरम टी पॉइंट से नई दिल्ली की ओर जाने वाले गोल चक्करों, झंडेवाला, पंचकुइया मार्ग, मंडी हाउस, अशोक रोड से जंतर मंतर रोड, विंडसर पैलेस और टॉलस्टॉय मार्ग से जनपथ क्रॉसिंग तक के लिए मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यात्रियों को पहले से यात्रा की योजना बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि स्थायी श्रम प्रमाणन पर्म कार्यक्रम के संबंध में अमेरिका के फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रतिभाओं का आवागमन भारत और अमेरिका दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय पेशेवरों को अवसर मिलते ही हैं, साथ ही अमेरिकी कंपनियों को भी अत्याधुनिक प्रतिभा, नवाचार, अनुसंधान, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार सृजन के माध्यम से समान रूप से लाभ मिलता है। श्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि पर्म कार्यक्रम H-1B वीजा से अलग है।
2: यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पर्म H-1B वीजा कार्यक्रम से अलग है। पर्म आवेदनों का निलंबन अपने आप में मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों डिपेंडेंट्स यानी की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि प्रभावित कंपनियां के योग्य कर्मचारियों की स्थायी निवास अथवा ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है।
1: श्री जायसवाल ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति J.D. Vance की गैर अमेरिकी कामगारों पर टिप्पणियों को अनुचित बताया।
2: हम मानते हैं कि इस तरह के वर्णन अवांछित हैं और उस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं कि अमेरिका में भारतीय पेशेवर उच्च शिक्षित हैं। वास्तव में अमेरिका का अपना इतिहास पीढ़ियों से आए उन प्रवासियों द्वारा गढ़ा गया है जिनके श्रम, उद्यम और नवाचार ने उसकी वृद्धि और समृद्धि में योगदान दिया है। ऐसे शब्दावली का प्रयोग करना जिससे दुखद ऐतिहासिक और उपनिवेशिक विरासत के संदर्भ जुड़े हों अत्यंत आपत्तिजनक है।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार राजस्व साझा किए जाने के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी।
3: There are three parties.

0: तीन कंपनियों को इसके लिए लाइसेंस दिए गए हैं, इनमें रिलायंस जियो, वन वेब और स्टारलिंक शामिल हैं। राजस्व शुल्क से जुड़ी व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने के बाद तीनों कंपनियों को अलग अलग निर्धारित शर्तों और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, साथ ही सभी जरूरी प्रक्रियाओं का अनुपालन भी सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद ही प्रत्येक कंपनी परिचालन शुरू कर सकेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को हकीकत में कैसे बदला जा रहा है।
2: सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक की नींव है और किसी भी देश की आर्थिक ताकत का एक अहम आधार है। इनका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूरसंचार, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और आधुनिक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में होता है। पिछले दो वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत में 6 राज्यों में 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है। नई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत को सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
3: भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आईटी विशेषज्ञ प्रसून शर्मा ने कहा कि भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा अब केवल सपने देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इसे जमीन पर उतारा जा रहा है।
4: सेमीकंडक्टर जर्नी,
5: भारत अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में केवल उपभोक्ता और डिजाइनर बने रहने के बजाय चिप निर्माण और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर तकनीक को AI, ऑटोमोबाइल, दूर संचार, रक्षा, रेलवे और औद्योगिक ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों से जोड़ना भी है।
4: इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन,
2: भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में रणनीतिक क्षमताएं विकसित करने से लेकर एक व्यापक घरेलू इकोसिस्टम तैयार करने तक का बदलाव आया है। इन प्रयासों से भारत सेमीकंडक्टर के हर क्षेत्र में काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से निरंतर कौशल उन्नयन और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुकूल ढलने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में विश्व कौशल प्रतियोगिता में शामिल भारतीय टीम के सदस्यों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने ये बात कही।
6: हमने अपने आप को भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, विश्व में जो नए नए बदलाव आ रहे हैं, बदलाव की दृष्टि से अपने आप को ढालना पड़ता है। आपके पास क्या है, कितनी डिग्रियां हैं, उसका अपना महत्व है ही, लेकिन आपको आता क्या है, उसका जवाब है स्किल। जीवन में कोई न कोई स्किल होना चाहिए, तब जाकर के आप काफी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
1: चीन में 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में टीम इंडिया ने 6 रजत पदक और उत्कृष्टता के लिए 20 पदकों के साथ 10वां स्थान हासिल किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से तय नहीं होती, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आधुनिक सैन्य उपकरणों के एक विश्वसनीय निर्यातक के रूप में उभर रहा है। रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 249 रन बनाए। संजू सैमसन ने

0: 80 रन की पारी खेली। पांच मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने तमिलनाडु में उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा ने जीत दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा, स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवीपिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. BJP wins assembly polls for Rajinagar and Nandigram constituencies in West Bengal. In Tamil Nadu, ruling TVK wins assembly by polls for Madurantakam and Dharapuram seats. All India NR Congress retains Thattan Chowri assembly constituency in Puducherry. BJP also bags Assam's Nogaon Lok Sabha seat. Delhi police declines permission for protest at Jantar Mantar tomorrow. 57 metro stations in Delhi to remain closed till tomorrow due to security reasons. All mail and express trains scheduled to arrive at New Delhi and Hazrat Nizamuddin railway stations between 4 a.m. and 2 p.m. tomorrow stands cancelled at source stations. India stresses the steps announced by US regarding permanent labour certification program do not advance shared ambitions of both countries. South African jurist of Indian origin Navnetham Navipillai wins Nobel Peace Prize for her contributions to promoting peace and international law. And in cricket, second T20 international between India and West Indies underway in Ranchi. The BJP has registered massive victories in both assembly constituencies of West Bengal Nandigram and East Mednipur district and Rajinagar and Murshidabad district, where by-elections were held. In Nandigram, BJP candidate Hasi Rani Rath defeated her nearest rival, Congress candidate Milan Pradhan, by a margin of over 1,22,000 votes. In Rajinagar, BJP candidate Shakarav Sarkar wrested the seat from the Aam Janata Union Party, or AJUP, securing 1,29,914 votes. He defeated his nearest rival, Ghulam Nabi Azad, son of AJUP chief Humayun Kabir, by a margin of over 75,000 votes. With victories in both these constituencies, the BJP's tally in the West Bengal Assembly has risen to 209 seats. In Puducherry, All India NR Congress candidate Ashok Anand has secured a comfortable victory with a margin of 8,482 votes for Thattanam Chowri Assembly constituency by election. The seat was vacated by Puducherry Chief Minister N. Rangasamy. In Tamil Nadu, the ruling Tamilaga Vetri Karagam TVK has won the assembly by polls for Madurantakam and Dharapuram seats today. In Madurantakam, TVK candidate K. Maragatham Kumarevel defeated DMK's I. Paranthaman by 73,801 votes. The DMK candidate secured 53,743 votes. In Dharapuram, TVK candidate P. Satyabama won the seat by securing 66,841 votes against DMK candidate S. Suganya,

0: Intelligence for Vikasit Bharat at 2047. The participants were Gaurav Nayyar, Director of World Development Report 2026, and Jiten Kumar Jain, IT expert. Moderator was Arjun J. Chowdhury. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 928-909-4044.
1: Current Affairs.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगावेत्री कजगम टीवीके ने भी दारापुरम और मदुरांतकम में सीटें जीत ली हैं। पुदुचेरी की तट्टन चावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजय रही। असम के नागांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवश्री शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नागांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा एनडीए के सुशासन पर भरोसा है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। श्री मोदी ने पुदुचेरी के तट्टन चावड़ी में जीत के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी एआईएनआरसी को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जीत लोगों की भलाई और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करने में पार्टी को और मजबूती देगी। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इंकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नुपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
3: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
2: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। भारत ने कहा कि स्थायी श्रम प्रमाणन पर्म कार्यक्रम के संबंध में अमेरिका के फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रतिभाओं का आवागमन भारत और अमेरिका दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय पेशेवरों को अवसर मिलते ही हैं, साथ ही अमरीकी कंपनियों को भी अत्याधुनिक प्रतिभा, नवाचार, अनुसंधान, उत्पादकता और रोजगार सृजन के माध्यम से समान रूप से लाभ मिलता है। श्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि पर्म कार्यक्रम H1B वीजा से अलग है। भारतीय मूल की

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। मुख्य समाचार। भारत ने कहा स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कल हुए हमलों में 3 सऊदी नागरिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर को 174 लोगों की जान बचाने के लिए इसराइल का सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान मिलेगा। और रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि स्थायी श्रम प्रमाणन परम कार्यक्रम के संबंध में अमेरिका के फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रतिभाओं का आवागमन भारत और अमेरिका दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय पेशेवरों को अवसर मिलते ही हैं, साथ ही अमेरिकी कंपनियों को भी अत्याधुनिक प्रतिभा, नवाचार, अनुसंधान, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार सृजन के माध्यम से समान रूप से लाभ मिलता है। श्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि परम कार्यक्रम H-1B वीजा से अलग है।
1: यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि परम H-1B वीजा कार्यक्रम से अलग है। परम आवेदनों का निलंबन अपने आप में मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों डिपेंडेंट्स यानी की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि प्रभावित कंपनियां के योग्य कर्मचारियों की स्थायी निवास अथवा ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है।
0: श्री जायसवाल ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की गैर अमेरिकी कामगारों पर टिप्पणियों को अनुचित बताया।
1: हम मानते हैं कि इस तरह के वर्णन अवांछित हैं और उस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं कि अमेरिका में भारतीय पेशेवर उच्च शिक्षित हैं। वास्तव में अमेरिका का अपना इतिहास पीढ़ियों से आए उन प्रवासियों द्वारा गढ़ा गया है जिनके श्रम, उद्यम और नवाचार ने उसकी वृद्धि और समृद्धि में योगदान दिया है। ऐसे शब्दावली का प्रयोग करना जिससे दुखद ऐतिहासिक और उपनिवेशिक विरासत के संदर्भ जुड़े हों अत्यंत आपत्तिजनक है।
0: भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर के बाद इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और इथियोपिया की रणनीतिक साझेदारी साझा मूल्यों, समान आकांक्षाओं और विकासशील देशों के बीच ऐतिहासिक एकजुटता पर आधारित है। डॉ. जयशंकर ने आज अदिस अबाबा में इथियोपिया के विदेश मंत्री गेदियोन तिमोथेवोस हेस्बोन के साथ बैठक की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान व्यापार, निवेश, विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने आज अदिस अबाबा स्थित नेशनल पैलेस और संग्रहालय का दौरा किया। सोशल मीडिया पर दौरे की झलकियां साझा करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि संग्रहालय इथियोपिया की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व को बखूबी दर्शाता है। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने बताया है कि कल रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमलों में सऊदी अरब के 3 नागरिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। इन हमलों में एयरपोर्ट की सुविधाओं और सऊदी एयरलाइंस के एक विमान को निशाना बनाया गया। सऊदी एयरलाइंस ने बताया कि विमान में कोई यात्री सवार नहीं था, लेकिन चालक दल के सदस्य कैप्टन हमूद अली अल कलियथामी की मौत हो गई। इस बीच हूतियों द्वारा संचालित अल मसीरा टीवी ने सना और सदा में टेली कम्युनिकेशन सुविधाओं सहित कई जगहों पर हवाई हमलों की खबर दी। वहीं संयुक्त अरब अमीरात UAE में अमरीकी दूतावास ने नागरिकों से क्षेत्र की सुरक्षा

0: स्थिति को देखते हुए ज्यादा सतर्क रहने को कहा है और उड़ानों के रद्द होने, एयर स्पेस बंद होने और यात्रा में रुकावट की संभावना के बारे में चेतावनी दी है। दूतावास ने कहा कि इन हमलों के तेजी से बढ़ने की आशंका है। सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमरीका सहित अन्य सहयोगियों से मदद मांगी है। अधिकारियों ने बताया कि इसमें खुफिया जानकारी साझा करना, लक्ष्यों की पहचान करना और परिचालन योजना बनाना शामिल है। हूतियों के खिलाफ कार्रवाई का उद्देश्य यमन के पश्चिमी लाल सागर तट और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बाब अल मंदब जल डमरू मध्य के पास हूतियों के कब्जे वाले क्षेत्र पर फिर से नियंत्रण स्थापित करना है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
1: पिल्ले संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के दौर में अपना बचपन बिताया। इसके बाद उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। 1941 में डरबन में भारतीय तमिल मूल के माता पिता के घर जन्मी पिल्ले बाद में दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली पहली श्वेत महिला बनी। उन्होंने रवांडा के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण में न्यायाधीश और अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। इसके अलावा वे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की न्यायाधीश और 2008 से 2014 तक संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार उच्चायुक्त भी रहीं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर को इसराइल के सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने घोषणा की है कि कैप्टन मच्छर के स्वस्थ होने के बाद उन्हें नागरिक वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात UAE के अधिकारियों के अनुसार विमान के सह पायलट ने कैप्टन मच्छर पर हमला किया और 170 से अधिक यात्रियों को ले जा रहे विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की कोशिश की। घायल होने के बावजूद भारतीय पायलट ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने में सफलता हासिल की, जिससे यात्रियों को हमलावर पर काबू पाने में मदद मिली। इस घटना के दौरान सह पायलट को काबू करने में मदद करने वाले इसराइल के 6 नागरिकों को भी उनके साहसिक कार्य के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तंजानिया में आज सुबह एक यात्री बस और लकड़ी से भरे ट्रक की टक्कर के बाद बस में आग लग गई। इस हादसे में लगभग 28 लोगों की मौत हो गई। मोरो गोरो क्षेत्र के अग्निशमन और बचाव दल के कार्यवाहक कमांडर के अनुसार यह हादसा मोरोगोरो दारस सलाम राजमार्ग पर हुआ, जब बस दारस सलाम से मवेया जा रही थी। ब्रिटेन का प्रतिनिधिमंडल 12 से 16 अक्टूबर तक भारत आएगा। इसमें उत्तरी इंग्लैंड के विभिन्न हिस्सों से करीब 200 प्रतिनिधि शामिल होंगे। ग्रेट नॉर्थ ट्रेड मिशन का उद्देश्य भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA के अंतर्गत व्यापार और निवेश के अवसर तलाशना है। रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक वेस्टइंडीज ने 14वें ओवर में 3 विकेट पर 172 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 249 रन बनाए। संजू सैमसन ने 82 रन की पारी खेली। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कल हुए हमलों में 3 सऊदी नागरिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर को 174 लोगों की जान बचाने के लिए इसराइल का सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान मिलेगा। और रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का अंक

0: समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम साहिरा मुज्तबा विद वर्ल्ड न्यूज।

0: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके ने भी दारापुर और मदुरांतकम में सीटें जीत ली हैं। पुद्दुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजयी रही। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा एनडीए के सुशासन पर भरोसा है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। श्री मोदी ने पुद्दुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। आज शाम विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर लगे आरोपों के सिलसिले में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं ने मांग की है कि EVM का इस्तेमाल बंद किया जाए और चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने इस मामले में सबूत मांगे हैं और वे उन्हें सबूत सौंपेंगे। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इंकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नुपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि CJP ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय के पीठ ने कहा है कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन कल से झांसी में किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 21 अक्टूबर तक चलेगी। प्रतियोगिता के 3 डिवीजनों में 29 टीमें मुकाबला करेंगी। डिवीजन ए का फाइनल मुकाबला 21 अक्टूबर को होगा। देश भर की हॉकी टीमों के बीच 10 अक्टूबर से वर्चस्व की लड़ाई होगी। इस संस्करण में डिवीजन ए, डिवीजन बी और डिवीजन सी होंगे, जिसमें टीमों को पिछले संस्करण की रैंकिंग के अनुसार समूह में बांटा जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: और इन हिंदी निखिल कुमार।
1: नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ हम मार्केट मंत्रा कार्यक्रम लेकर फिर से हाजिर हैं। आज की खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं आर्थिक विश्लेषक उदयन रे। उदयन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में अर्जुन।
0: Benchmark domestic indices rebound. Sensex jumps over 1%. Nifty settles above 22,500 mark. Asian stock markets and mixed and global crude oil prices decline.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज तेजी का रुख। सेंसेक्स में 1% से अधिक का उछाल और निफ्टी 22,500 अंक से ऊपर बंद हुआ। एशियाई शेयर बाजारों में मिला जुला रुख और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट।

0: And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज जोरदार तेजी देखी गई। इसके साथ ही बाजार में लगातार दो कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 879 अंक यानी 1.23% की बढ़त के साथ 72,472 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 289 अंक यानी 1.3% चढ़कर 22,520 पर पहुंच गया। विस्तृत बाजार में भी आज तेजी का रुख देखने को मिला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का कैप सूचकांक करीब 1.7% उछला, जबकि स्मॉल कैप में आधे प्रतिशत से अधिक की बढ़त दर्ज हुई।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस रीबाउंडेड टुडे, स्नैपिंग अ टू डे लूजिंग स्ट्रीक। सेंसेक्स एडवांस 879 पॉइंट्स 1.23% टू क्लोज एट 72,472। निफ्टी गेन 289 पॉइंट्स 1.3% टू सेटल एट 22,520। इन द ब्रॉडर मार्केट एट द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, द मिड कैप 100 इंडेक्स रोज नियरली 1.7% एंड द स्मॉल कैप 100 इंडेक्स एडेड ओवर हाफ ए परसेंट।
1: सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 29 के शेयरों में तेजी रही। बढ़त दर्ज करने वाली प्रमुख कंपनियों में आईटीसी के शेयर 4.8% चढ़े। टीसीएस में 4.2% से अधिक की तेजी आई, जबकि अडानी पोर्ट्स के शेयर 3.4% मजबूत हुए। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज एकमात्र ऐसी कंपनी रही जिसके शेयरों में 0.6% की गिरावट देखी गई।
0: ऑल 28 सेक्टोरल इंडस्ट्रीज ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एज्ड अपवर्ड। Among the top gainers, focused IT climbed nearly 3%, IT jumped 2.9% and hospitals gained 2.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive as shares of 2,516 companies advanced, 1,867 companies declined and 227 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के मुकाबले आज 5 पैसे की मजबूती के साथ 96.74 रूपये पर बंद हुआ। उद्यन एक बार कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: एक बड़ा सवाल यह है कि 8 सप्ताह में लगातार बाजार गिरावट के साथ बंद होता रहा। आज हमने देखा कि 8 सप्ताह के बाद बाजार तेजी के साथ बंद हुआ और ये भी हम देख रहे हैं कि बिकवाली अभी रुक नहीं रही।
2: हाँ, देखिए जैसे होता है कि बारिशों के मौसम में काफी दिन जब बारिश होती है और एक दिन धूप खिल निकल आती खिलती हुई तो वेलकम तो लगता है, वो उसका सभी स्वागत करेंगे। पर ये बताने लायक बात ये है कि ये जैसे कि पूरा जो मार्केट का मूड और मूवमेंट रहा है वो कच्चे तेल के दाम और खाड़ी में जो संघर्ष चल रहा है उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब क्योंकि कल अमरीकी राष्ट्रपति ने कुछ ऐसे वक्तव्य दिए जिससे लगा कि अगले कुछ हफ्तों तक वहां पे जो चुनाव होने वाले हैं मिड टर्म्स, तो वहां तब तक शायद संघर्ष ना हो, कोई ताजा संघर्ष ना हो, तो उससे थोड़ा सा एक रिलीफ मिला है। और दूसरा, आईटी सेक्टर में एक प्रमुख कंपनी के नतीजों का जब आकलन किया गया है तो उसमें उम्मीद जगी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वहां पे यह पाया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से जुड़े हुए जो उनकी गतिविधियां हैं

0: जो फॉरेन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं वो वहां पे मतलब बहुत बहुत सावधानी के साथ वहां पे ऑपरेट करते हैं। ये तो हमारे डीआईआईज हैं, हमारे स्वदेशी जो इंस्टीट्यूशनल संस्थान है वो वहां पे जाके वहां पे उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है। पर ये भी सच है कि वहां पे जो कल के सुपरस्टार्स हैं वो वहां पे हैं। तो हाँ, तो वो जो शुभमन गिल आज से 5-6 साल पहले थे वो उस टाइप के स्टॉक्स हैं वहां पे, तो वो भी अपॉर्चुनिटी है वहां पे। वो होता है जोखिम भी ज्यादा होता है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये एक इतना इतने दिन तक ऐसा एक माहौल बना रहा, तो आज जब हाई टाइड आया तो सब सारे बोट्स उठ गए। तो पर वहां पे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आ रही हैं, इन्वेस्टिंग स्टोरीज आ रही हैं, जिसकी वजह से भी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब भेड़ चाल में सब कुछ चल रहा है, वहां पे काम अच्छा हो रहा है। पर स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में अगर कुछ सुपरस्टार बन जाते हैं तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो साइड में रह जाते हैं, तो वो दोनों टाइप के रिस्क होते हैं। तो वो आप अगर किसी के थ्रू जा रहे हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स या एनपीएस या किसी और के थ्रू से आपका निवेश हो रहा है, स्लाइटली बेटर होता है क्योंकि वहां पर आपको एक्सपर्टीज का फायदा मिलता है।
1: तो क्या ये समय है लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने में, क्योंकि जिस तरह के मार्केट के हालात हम देख रहे हैं चारों तरफ जैसी स्थितियां बनी हुई हैं?
0: देखिए, अगर लंबी अवधि के लिए आप निवेश कर रहे हैं तो एक तो ये है कि आप लार्ज कैप देखें, मिड कैप देखें, फिर मल्टी कैप, उस टाइप की बातें करें, मतलब या तो सीधे स्टॉक या फंड्स हैं। दूसरा है कि बिल्कुल आप इसमें सर खपाना नहीं चाहते हैं तो सीधे इंडेक्स फंड या ईटीएफ में डालें, और वाइड इंडेक्स होना चाहिए, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 500 में देखिए। और इंडेक्स फंड्स तो अब और पॉपुलर होते चले जा रहे हैं, उसमें आप ये सोचिए कि भारतीय इक्विटी जो शेयर बाजार का एक रिप्रेजेंटेटिव है, उसको एक स्टॉक की तरह समझिए, और एक मतलब एक यूनिट को, और कहिए कि ये भारत के शेयर बाजार को रिप्रेजेंट करता है और मैं इस यहां पे निवेश करना चाहता हूं। भारतीय जो कंपनियां हैं, कम से कम हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है प्लस इन्फ्लेशन जो है, उतना रिटर्न तो देगी, एक अच्छी कंपनी तो उतना देती ही है। और ये अगर मान के आप अगर चलते हैं कि आपको लगता है, गारंटी की कोई किसी बात की होती नहीं है, पर लंबी अवधि में यह पाया गया इतना तो हो ही जाता है। तो अगर आप इंडेक्स को एक स्टॉक की तरह माने, एक यूनिट को, म्यूचुअल फंड यूनिट, इंडेक्स फंड या ईटीएफ, जो कि निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 या 100 या 500 जो भी करते हैं, थोड़ा सा बड़ा ब्रॉड बेस, तो वो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तब आपको ये सब स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिक्स कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, उसके बारे में, या अलग अलग जोड़ तोड़ करके देखिए। एक तो होता है कि जो फॉर अ लिविंग जो ये निवेश करते हैं, एक रोजमर्रा की जिंदगी लोग जी रहे हैं, उनको काम भी करना है, उनको परिवार के साथ समय भी बिताना है, तो उनके लिए ये वाला रूट शायद बेहतर है, बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी।
2: वेरी ब्रीफली, अपार्ट फ्रॉम आईटी, एफएमसीजी आल्सो डिड वेरी वेल टुडे, द इंडेक्स वेंट अप बाय 966 पॉइंट्स। अगेन क्वार्टरली रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी गुड।
0: I would say there might just be a mixed bag. It may not be a wide-ranging thing, but I think what people would be looking at, how these guys are looking at the festive season. So all eyes would be on the festive season.
1: एशियाई बाजारों में आज सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% गिर गया। जापान का निक्केई 225 मामूली रूप से नीचे है, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग 1.8% चढ़ा और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं दक्षिण कोरिया का कोस्पी अवकाश के कारण बंद रहा। आज एशियाई बाजारों में भी एक तरह से ऐसा रुख हमें देखने को नहीं मिला जिससे ये पता चले कि जो पॉजिटिव खबरें आ रही थी अलग अलग देशों से, खासतौर पर यूएस की बात करते हैं, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला हो।
0: वो मुझे लगता है कि ऐसे अभी तो मैंने डिटेल में देखा नहीं है, मुझे लगता है वो वहां पे इंडिविजुअल केसेस में बातें रही होंगी, पर ये जो इफेक्ट है आज भी, अगर आज उसको पूरी कंटिन्यूटी में आज अगर देखेंगे, मुझे लगता है शायद थोड़े से बेहतर पूरा जब हो जाएगा, थोड़ा सा स्लाइटली लॉन्गर पीरियड में लेंगे, एक दिन और ले लेंगे, शायद आपको वही ट्रेंड आपको वहां पे भी रुझान वहां दिखे, वही हो रहा है
1: जी। आगे बढ़ते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने कहा है कि मौजूदा अलनीनो की स्थिति और तीव्र होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की भी संभावना है। इससे कई इलाकों में सूखे

0: और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। 2026 में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचेगा। इस घटना से मौसम का पैटर्न प्रभावित होगा और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पारिस्थितिक तंत्रों पर इसका असर पड़ेगा। संगठन की महासचिव सेलेस्टे साउलो ने कहा है कि अल नीनो की स्थिति तेजी से मजबूत हो रही है और इसके फरवरी 2027 तक बने रहने की लगभग 100% संभावनाएं। और अब अगर भारत की बात करें तो आरबीआई के गवर्नर के हवाले से यह बात कही जा रही है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सप्लाई चेन में बाधाओं का असर घरेलू आर्थिक गतिविधियों पर पड़ सकता है। वहीं कमजोर दक्षिण पश्चिम मानसून और अल नीनो की स्थिति से आगामी रबी सीजन और ग्रामीण मांग प्रभावित हो सकती है। हालांकि गैर कृषि गतिविधियों के मजबूत बने रहने से ग्रामीण खपत को सहयोग मिलने की भी उम्मीद है। वहीं महंगाई के मोर्चे पर भी चुनौतियां बनी हुई हैं। कमजोर मॉनसून, अल नीनो और अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों से जो उतार चढ़ाव पर महंगाई पर जो दबाव बन रहा है वो आगे भी जारी रह सकता है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी, कोर महंगाई में बढ़ोतरी और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की अधिकतर श्रेणियों में महंगाई का बढ़ना इस दबाव के व्यापक होने का संकेत दे रहा है। उद्यम जिस तरह से आरबीआई के गवर्नर ने ये तमाम चीजें कही हैं, क्या स्थिति नजर आती है खासतौर पर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो हमारी अपनी नीड्स हैं उनको लेकर के?
1: देखिए, खाद्य पदार्थ फूड की जो मुद्रास्फीति है वो हमेशा एक एल नीनो के वेदर सिस्टम से उसके ऊपर असर पड़ता है। हमारे देश में फिर भी हम खाद्य भंडार रखते हैं, जो क्रॉप्स हैं उसमें हम वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर।
0: रबी के लिए चिंता जताई गई
1: है। जी बिल्कुल है। और अगर आपने कमेंट्री देखी होगी इंटरेस्ट रेट से जुड़ी हुई, इसी लोगों का मानना है कि एक और इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी, एक और राउंड शायद साल के अंत में या अगले साल के बिल्कुल शुरुआत में एक और होगा। उसके बाद अगर जो खाड़ी क्षेत्र में जो संघर्ष है वो अगर बढ़ ना जाए तो फिर उसके बाद एक ईजिंग होगी, नहीं तो अभी लोगों का मानना है क्योंकि ये इस टाइप की चीजें हो रही हैं, कुछ और भी घटनाक्रम में उम्मीद की जा रही है, तो उनको मानना है कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, मुद्रास्फीति की जो दबाव है वो बरकरार रहेगी और उसको काउंटर करने के लिए आरबीआई को शायद एक और रेट हाइक, रेट इन ब्याज दरों में बढ़ोतरी एक और राउंड की जरूरत पड़ेगी।
0: आईएमडी ने भी आंकड़े जारी किए हैं, उनके अनुसार ये कहा गया कि जुलाई से सितंबर के बीच में हमारा जो रेनफॉल है वो वर्ष 2001 के बाद से अपने मतलब सबसे न्यूनतम स्तर पर आ गया, इसका भी काफी असर पड़ रहा है।
1: बिल्कुल, ये और ये सबसे पहले जब भी वेदर सिस्टम्स में प्रॉब्लम होती है, इस टाइप के सिचुएशन आती हैं, परिस्थितियां होती हैं, तो सबसे बड़ी चिंता होती है कि हमारे कृषि के ऊपर क्या असर पड़ेगा, खाद्य पदार्थ और खाद्य पदार्थ से जुड़े हुए जो दाम हैं उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, और उस हिसाब से सरकार को अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्शंस हैं वो प्लान करने पड़ते हैं।
2: जी। In more news, GST Council yesterday announced a host of reforms aimed at improving compliance in the GST regime. Talking to Akashvani, Jyoti Vij, Director General of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, said GST Council's reforms announcement will facilitate the ease of doing business.
3: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डीक्रिमिनलाइजेशन की तरफ काफी इसमें पॉजिटिव मेजर्स लिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन में हमारे इंडस्ट्री की एक मांग थी कि ई कॉमर्स कंपनीज की जब स्टेट लेवल पे रजिस्ट्रेशन होती है तो वो स्टेट लेवल के एड्रेसेस मांगते हैं। ई कॉमर्स के हर जगह में अपने ऑफिसेज नहीं होते तो हमारा रिकमेंडेशन था कि वेयर हाउसेज को लिया जाए, वो रिकमेंडेशन जो है वो मान लिया गया है। नोटिसेस जो जाएंगे वो एक थ्रेशोल्ड कर दी गई है 10,000 की, तो वो 90% उसी में कैप्चर हो जाते हैं। इसमें काफी नोटिसेस कम हो जाएंगे, ये काफी परेशानी थी इंडस्ट्री की। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इजी कंप्लायंसेस, डीक्रिमिनलाइजेशन, इन सबसे इंडस्ट्री का फायदा होगा।
2: स्पीकिंग टू आकाशवाणी, डॉक्टर रंजीत मेहता, CEO and Secretary General of the PSG Chamber of Commerce and Industry, welcomed the GST Council recommendations.
4: The recommendation of the 57th GST Council meeting represents a significant step towards making India taxation system simpler, more transparent and business friendly. The recommendation to remove arrest provision under GST, increase the prosecution threshold from 1 crore to 5 crore, sends a strong message that genuine business should be encouraged, not burdened by excessive procedural complexities.
2: Will you brief comments on this because GST collection for the month of September was 2.8

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम की नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजी नगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा एनडीए के सुशासन पर भरोसा है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। श्री मोदी ने पुद्दुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जीत लोगों की भलाई और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करने में पार्टी को और मजबूती देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों की सेहत, पोषण और सर्वांगीण विकास पर ज्यादा ध्यान देने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में महिला एवं बाल विकास पर दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने जन भागीदारी पर जोर दिया और आंगनवाड़ियों को सामुदायिक भागीदारी का केंद्र बनाने का आह्वान किया। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा है कि CJP ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से रात 9 बजे से आज 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इधर रेल मंत्रालय ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी के कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन के लिए एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने कहा कि हालात के हिसाब से आज सुबह 6 बजे से डायवर्जन लागू हो जाएंगे। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आज कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय के पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। क्रिकेट में रांची में खेले गए दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। जीत के लिए 250 रन का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने 6 विकेट और 9 गेंदें बाकी रहते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The BJP has registered massive victories in both assembly constituencies of West Bengal, Nandigram in East Midnapore district and Rejinagar in Murshidabad district, where by-elections were held. With victories in both these constituencies, the BJP's tally in the West Bengal Assembly has risen to 209 seats. BJP also won the Nagaon Lok Sabha by-election in Assam. In Puducherry, All India NR Congress won the Thattan Chavadi seat, while in Tamil

0: இரவின் மடியில் நிகழ்ச்சிகள் இதுவரை காக்கிச்சட்டை, நானே ராஜா நானே மந்திரி, படிக்காதவன் ஆகிய படங்களிலிருந்து பாடல்கள் கேட்டீர்கள். சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
2: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: सुश्री प्रसाद ने कहा कि सीजेपी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से रात 9 बजे से आज 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इधर रेल मंत्रालय ने

आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी के कई इलाकों में यातायात के मार्ग में परिवर्तन के लिए परामर्श जारी किया है। पुलिस ने कहा कि हालात के हिसाब से आज सुबह 6 बजे से मार्ग परिवर्तन लागू हो जाएंगे। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले से बना लें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आज कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। चुनाव आयोग ने व्यक्तिगत मतदाताओं द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म 7 आवेदनों की संख्या तय कर दी है। इसके तहत दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान ज्यादा से ज्यादा 10 आवेदन और मतदाता सूची को लगातार अद्यतन करने की प्रक्रिया के दौरान हर महीने 5 आवेदन ही भरे जा सकते हैं। ओडिशा में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2024 का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 10 स्थानों पर छापेमारी की है। ईडी अधिकारियों ने बताया कि ये मामला पिछले साल अक्टूबर में ओडिशा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है और बाद में इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के रेजीनगर और नंदीग्राम सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके ने भी दारापुर और मदुरांतकम सीटें जीत ली हैं। पुद्दुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजयी रही। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम की नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा एनडीए के सुशासन पर भरोसा है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। श्री मोदी ने पुद्दुचेरी के तट्टा नचावड़ी में जीत के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। क्रिकेट में रांची में खेले गए दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। जीत के लिए 250 रन का पीछा करते हुए इंग्लैंड वेस्टइंडीज ने 6 विकेट और 9 गेंद बाकी रहते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने तय 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 249 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि सीजेपी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से रात 9 बजे से आज 45 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इधर रेल मंत्रालय ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी के कई इलाकों में यातायात के मार्ग में परिवर्तन के लिए परामर्श जारी किया है। पुलिस ने कहा है कि हालात के हिसाब से आज सुबह 6 बजे से मार्ग परिवर्तन लागू हो जाएंगे। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आज कॉकरोच

0: जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। कल शाम विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर लगे आरोपों के सिलसिले में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। चुनाव आयोग ने व्यक्तिगत मतदाताओं द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म 7 आवेदनों की संख्या तय कर दी है। इसके तहत दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान ज्यादा से ज्यादा 10 आवेदन और मतदाता सूची को लगातार अपडेट करने की प्रक्रिया के दौरान हर महीने 5 आवेदन ही भरे जा सकते हैं। आयोग ने यह निर्णय इसलिए लिया ताकि कोई एक मतदाता बड़ी संख्या में आपत्तियां न दर्ज करा सके। ये सीमा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से फॉर्म भरने पर लागू होगी। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कजगम TVK ने भी दारापुरम और मदुरांतकम सीटें जीत ली हैं। पुद्दुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया NR कांग्रेस विजयी रही। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम की नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा NDA के सुशासन पर भरोसा है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। श्री मोदी ने पुद्दुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए NDA की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन आज से झांसी में किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 21 अक्टूबर तक खेली जाएगी। प्रतियोगिता के 3 डिवीजनों में 29 टीमें मुकाबला करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। BJP has registered massive victories in both assembly constituencies of West Bengal, Nandigram in East Midnapore district and Rijinagar in Murshidabad district, where by-elections were held. With victories in both these constituencies, the BJP's tally in the West Bengal assembly has risen to 209 seats. BJP also won the Nagaon Lok Sabha by-election in Assam. In Puducherry, All India NR Congress won the Thattan Chavri seat, while in Tamil Nadu, the ruling Tamilga Vetri Kazhagam secured victories in Mudanthakam and Dharampuram seats. Prime Minister Narendra Modi congratulated the BJP candidates and praised party workers, saying the results reflected public support for the BJP NDA's good governance agenda. He also congratulated the AINRC for its victory in Puducherry. Union Home Minister Amit Shah said the NDA's by-election and local body poll victories showed that the people have completely rejected the India Alliance. Prime Minister Narendra Modi has called for greater focus on the health, nutrition and overall development of adolescent girls. Chairing the valedictory session of the 2-day National Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi, Mr. Modi emphasized on Jan Bhagidari and called for making Anganwadis as centers of community participation. The summit brought together ministers and senior officials from states and union territories for focused deliberations on nutrition and early childhood care, child protection, women's safety and empowerment, and strengthening delivery of services through greater convergence. Delhi police has denied permission for the CJP's proposed protest at Jantar Mantar today. Addressing the media in New Delhi yesterday, Delhi Police Joint Commissioner Nupur Prasad said that applications seeking permission to hold protests or other programs at Jantar Mantar must be submitted at least 10 days in advance.
2: We have received an application from Sarov Das, co-convener of Cockroach Janata Party. The application is

0: நேரில் இதுவரை கட்டசித்து இந்த நிகழ்ச்சி 100.1 எஃப்எம் கோல்டு வழங்கிய நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. தொடர்ந்து ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகமது ஜுபேர். दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है. संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है.
2: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग. इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है. जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था.
1: सुश्री प्रसाद ने कहा है कि CJP ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था. पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है. सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है. इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से रात 9 बजे से आज 45 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है. नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी. इधर रेल मंत्रालय ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं. कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी के कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन के लिए एडवाइजरी जारी की है. पुलिस ने कहा है कि हालात के हिसाब से सुबह 6 बजे से डायवर्जन लागू हो जाएंगे. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और गैर जरूरी यात्रा से बचें. सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आज कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है. न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए. न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं. कल शाम विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर लगे आरोपों के सिलसिले में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर।
1: कार्यक्रम महिषासुर मर्दिनी, मूल आलेख बानी कुमार, हिंदी रूपांतरण दीप नारायण मिठोलिया, श्लोक पठन बीरेंद्र कृष्ण भद्र, वाचन और संगीत संयोजन पंकज कुमार मल्लिक।

0: नित्यं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्यामि संशयम्।
1: पूर्व कल्प के अवसान के पश्चात प्रलय काल में जब समस्त संसार कारण सलिल में परिणत हुआ, तब भगवान विष्णु ने अपनी संपूर्ण शक्ति प्रभाव संग्रहित कर कारण समुद्र में मंडित ग्रहण किया।

अवसान पर ना विकमल से जाग उठे वादि कल्प के सृष्टि विधाता ब्रह्मा, परंतु विष्णु के कर्णमल से उत्पन्न मधुकैटव असुर ब्रह्मा के कर्म और अस्तित्व के नाश के लिए उद्दत हो उठा। तब पद्म योनि ब्रह्मा ने योग निद्रा मग्न सर्वशक्तिमान विश्व पिता विष्णु को जागृत

स्वाहा वंश्वधा वंहि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमशरी नित्ये त्रिधामत्रात्मिका स्थिता अर्धमत्रा स्थिता दिव्या यानुचर्या विशेषतः त्वमेव सा त्वं धारित्री त्वं देवी जननी परा त्वैव धार्यते सर्वं तवैतत्सृज्यते जगत् तवैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा सहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्वञ्च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रि गोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्री स्वविश्वरी त्वं ह्री स्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टि स्वं शान्ति इक्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाण भूषुणी परिघायुधा सौम्य सौम्यतराशेष सौम्यभस्वति सुन्दरी परापराणं परमा त्वमेव।

तामसी देवी सबन से प्रबुद्ध हो विष्णु के अंग प्रत्यंग से बाहर प्रकट हो आई भंग हुई भगवान विष्णु की योग निद्रा तत्काल उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया और छिन्न कर डाला मधु कैटव का मस्तक ब्रह्मा पुल ध्यान मग्न हो बैठे इधर दुर्धर्ष दैत्यराज महिषासुर के पराक्रम से परास्त हो देवतागण स्वर्गाधिकार से वंचित हुए

उनके द्वारा दैत्यराज का क्षय असंभव जान, उनके निर्देशानुसार देवताओं ने कमल योनि ब्रह्मा जी को अपना प्रतिनिधि बना, वैकुंठ में जा देखा भगवान विष्णु और देवाधिदेव भगवान शिव परस्पर आलाप मग्न है। ब्रह्मा जी ने अपने मुख से कह सुनाई महिषासुर के दुर्विषह अत्याचार की करुण कहानी। स्वर्ग भ्रष्ट देवताओं का विषाद सुनते ही परम शांति योगीवर महादेव का सुगौर मुखमंडल क्रोध से रक्त कमल के समान लाल हो उठा। शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण की तन गई भ्रुकुटियां।

रूप में हिमाचल ने सिंह वाहन दिया विष्णु ने चक्र बिना पाणी शंकर ने शूल यम ने दंड काल देव ने सुतीक्ष्ण खंग चंद्र ने अष्टचंद्र शोभा से युक्त चर्म सूर्य ने धनुर्बाण विश्वकर्मा ने अभेद वर्म ब्रह्मा ने अक्षमाला और कमंडल कुबेर ने रत्न हार दे डाला सभी देवताओं ने महादेवी को नाना अलंकारों से अलंकृत एवं विविध प्रहरणों से सुसज्जित कर उनसे असुर विजय यात्रा के निमित्त प्रार्थना की रणदुंद विध्वनि से विश्व चराचर निनादित हो उठे यात्रा के पूर्व सुरनर लोकवासियों ने जननी दश प्रहरण धारिणी दशभुजी महाशक्ति के

इन्हीं मूर्ति का परिग्रह धारण कर फूका अपना शंख देवी के रणाहवान का अनुसरण कर ससैन्य दौड़ पड़ा महाबलशाली महिषासुर असुर राज देख स्तंभित हुआ तेजस्विनी महालक्ष्मी की तेज प्रभा से त्रिलोक ज्योतिर्मय हो उठे उनका मुकुट आकाश का चुंबन करने लगा पदभार से सारी पृथ्वी नत हो गई और धनुषंकार से प्रकंपित हो उठा संपूर्ण रसातल देव सेनापति ने महाशक्ति के जय मंत्र के गुण से

0: ने क्षण में प्रशमित्या तत्काल वे ऐन्द्रजालिक नयन विमोहन पुरुष वेश में प्रकट हुआ देवी के हाथों प्रत्याख्यान हो वे पुनः महिष मूर्ति धारण कर बैठा गणवाप्त दिग्दिगंत में निनादित हो उठे चतुरंगिणी सेना लाकर वे असुरेश्वर देवी को पराजित करने के भाव से उल्लसित हो उठा देवी का वाहन सिंहराज दावाग्नि के समान सारे रण क्षेत्र में विध्वंस करने लगा शत्रुओं को नाना प्रहरण धारिणी देवी दुर्गा ने मधुपान करते हुए महिषासुर को ललकारा
1: गर्ज गर्ज स्खलन मुहो मधु यावत् पिबाम्यहम् मैं आत्तै हते त्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवता
0: देवताओं ने हर्षोत्फुल्ल नेत्रों से देखा देवी दुर्गा ने महिषासुर

देवी के साथ महिषासुर का भीषण संग्राम छिड़ा। देवी के अस्त्र प्रहार से दैत्य सेना छिन्न भिन्न हुई। महिषासुर क्षण क्षण पर रूप परिवर्तन कर अनेक प्रकार के कौशल का करने लगा विस्तार। महिष ने

यैतत् कापि स्तुति सद्य परापरोक्तिः स्वर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्ति प्रदायिनी त्वं सूता सुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य निधि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमस्तुते कलाकष्ठादिरूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणी नमस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते अंशयुक्त विमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणी कौशाम्भशरीके देवी नारायणी नमस्तुते त्रिशूलचन्द्राही धरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते मयूरकुक्कुटभृते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूपशमस्थाने नारायणी नमस्तुते शङ्खचक्रगदाशारं गृहीत परमायुधे।

आपे भियो अने सुदानिव असुराश्रिक बसापंक जच्चितस्ते करज्वल शूहाय खड़गो भवतू चर्णिके वांगनतावयं भोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टातु कामान सकलान अभिष्टा त्वामश्रितानां नवीपन्नराणां त्वामश्रिता झाश्रयथां प्रयान्ति एतत्कृतं यत् कदलं तयाद्य धर्मदिशा देवी महासुराणां रूपैर् अनेकैर् बहुधात्ममूर्ति कृताम्बिके तत्प्रकृति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकोद्दीपे स्वाद्येषु वाक्येषु च कात्वदन्या ममत्तगत्ते अतिमहान्धकारे बिभ्रामयत्येतदतीव विश्वम् रक्ष्यांशि यत्र ग्रवीशाश्च नागा यत्रारयो दस्युवलादि यत्र धावानलो यत्र तगाब्धिबन्धे तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिका धारसीति विश्वम् विश्वेशवन्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये तै भक्ति नम्रा देवी प्रसीद परिपालय नोरि भीतिर्नित्यं यथा असुरवधाद दुनै वसेत्य पापादि सर्व जगदाज शमनयाशु उत्पात पाक जनितांश महोपसर्गान् प्रणतालं प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी रई

निर्गुण चंडिका से सगुण महालक्ष्मी का प्रथम प्रकाश सप्त कांचन वर्णाभादश प्रहरण धारिणी महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी दुर्गा का पूजन वैभव

महिषासुर मर्दिनी। महालय के पावन अवसर पर आप सुन रहे थे देवी आराधन का ये विशेष कार्यक्रम। मूल आलेख बानी कुमार, हिंदी रूपांतरण दीप नारायण मिठोलिया, श्लोक पठन बीरेंद्र कृष्ण भद्र, वाचन और संगीत संयोजन पंकज कुमार मल्लिक।